मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था

0: नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
2: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today, and that will deepen. That will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond.

मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1189 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कर रहा आराधना मैं आज तेरी, एक विनती तो करो स्वीकार मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।

आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। सुधा मल्होत्रा के स्वर में प्रस्तुत है मेरा भाई का भक्ति पद।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। किसान भाई कृषि संकेत में सुने मिट्टी एवं सिंचाई जल परीक्षण विषय पर जानकारी।

0: भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ लगभग 70% जनसंख्या के जौन जीवन यापन है वह कृषि पर आधारित है। मिट्टी एक प्राकृतिक पिंडा है और मिट्टी के अपन स्वतंत्र अस्तित्व है। यह हमेशा फसलन के उत्पादन पोषण में यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। इसे जरूरी है कि मिट्टी के स्वास्थ्य निखा होना चाहिए। मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में समुचित ज्ञान न होने के कारण फसलन में पोषक तत्व आवश्यकता के अनुसार उर्वरक और खाद के प्रयोग न होने के कारण मिट्टी की उत्पादकता में बहुत बुरा असर पड़ता है। मिट्टी में कोनो पोषक तत्व के अधिकता या की कमी हो सकती है, जो उनकी फसल की उत्पादकता में विपरीत प्रभाव डाल सकती है। ऐसे मिट्टी के परीक्षण करवाओ अत्यंत आवश्यक होते हैं। मिट्टी परीक्षण के अभाव में कभू कभू किसान भाई वह पोषक तत्वधारी उर्वरक का लगातार उपयोग करते हैं, जो उनकी पहले से मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व की अधिकता से फसल की उपज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इन तरह जौन फसल की सिंचाई में पानी का प्रयोग होता है ओह के परीक्षण करवाओ अत्यंत आवश्यक होते है। काहे की पानी में घुलनशील लवण होते जिनकर उपयोग एक निश्चित मात्रा तक फसल के नेता होते है। यह प्रकार से पानी के परीक्षण से यह पता चलत है कि पानी सिंचाई के योग्य है या नहीं। मिट्टी परीक्षण करवाओ काहे जरूरी है, काहे कि पौधन का अपने वृद्धि और विकास के खातिर सलगे पोषक तत्व की आवश्यकता होती। मिट्टी परीक्षण से यह पता चला था कि मिट्टी और पानी के अंदर कौने कौने तत्व के कमी है या की अधिकता है, वही के आधार पर वह सुधार किन जा सकत है। पौधन का निकी बढ़वार के नीता 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती, जिनकी कमी के कारण पौधा अपन जीवन काल पूरा नहीं कर पावे। अगर कौनो क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण में दोष जैसे अम्लीयता, क्षारीयता, लवण क्षयता का पता चला है तो वाखर सही उपचार करने के सलाह दी जाती। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाओ और ओके अनुसार फसलन के खातिर खाद और उर्वरक की आवश्यकता असंतुलित मात्रा में प्रयोग करें के सिफारिश की जाती। कौनो क्षेत्र में उर्वरक के प्रयोग से आने वाली अतिरिक्त उपज का आकलन कर भलाया में सम्मिलित होते हैं। मिट्टी परीक्षण कब करवावा जाए? मिट्टी परीक्षण फसल के बुवाई या की रोपाई के 1 महीना पहले कराने के चाहिए। लगातार फसल लेने वाले खेत में मिट्टी का परीक्षण हर साल करवाना चाहिए। जौन खेत में अपना साल में एक बार फसल ले थे वक्कर मिट्टी परीक्षण 2 या 3 वर्ष में करवाना चाहिए। मिट्टी के नमूना ले के सही विधि का हो चाहिए या बात का हमें बहुत ध्यान देने चाहिए। 0.5 हेक्टर खेत में एक नमूना ले के चाहिए। जौन खेत से मिट्टी के नमूना ले वहाँ 15 से 20 स्थान में निशान लगा देंगे चाहिए। जौन स्थान में निशान लगाई ओके ऊपरी सतह के घास फूस काकड़ पत्थर सब हटा देंगे चाहिए और फिर मिट्टी परीक्षण के खातिर मिट्टी निकालने का चाहिए। जब अपना 15 से 20 जगह के मिट्टी जौन इकट्ठा करी है वही एक साफ कपड़ा या की पॉलीथीन में अच्छी तरह से मिला ले। जौन मिट्टी का अपना नमूना के नीता लाए है वही बराबर से फैला दे और 4 बराबर भाग में बांट दे। आमने सामने के 2 भाग का रख के बाकी भाग का फेंक दे। जौन नमूना ले ओके संपर्क में राख दवाई खाद उर्वरक और बैटरी कुछ न होगा चाहिए। मिट्टी का जौन थैली में भर के धरी और मापन नाम पता फोन नंबर सब लिख के धर दे, ऐठे बढ़िया से चिट लगा दे। नमूना लिए के 2-4 दिन के भीतर परीक्षण के नेता प्रयोगशाला में भेज दे। पानी के परीक्षण करवाओ उतने जरूरी है जितना कि मिट्टी परीक्षण करवाओ। पौधा अपने पोषक तत्व का मिट्टी में घुलनशील रूप में ग्रहण करते है। पानी में सोडियम कार्बोनेट क्लोराइड पीएच क्षारक जैसन घटक बढ़ जाते जिससे पानी सिंचाई के योग नहीं रह जाए और पौधन का नुकसान होने लगा थे। इससे पानी की जांच करवाओ उतने आवश्यक है जितना कि मिट्टी की जांच करवाओ।
1: किसान भाई अभी कृषि संकेत में सुन रहे थे मिट्टी एवं सिंचाई जल परीक्षण विषय पर जानकारी। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस से पाठ।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

समूह स्वर में अभी आप रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज सवेरे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग का समय होगा सुबह 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल में शाम 7:21 पर नियमित चर्चा के अलावा आप सुनेंगे मौसम पूर्वानुमान, लोकगीत और अंजनी कुमार सिंह का बघेली कविता पाठ। सुगम संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 7:20 पर, कार्यक्रम संगीत प्रभा में, और सुबह 9:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदिना लिखितम् यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपादेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदात्री सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरेंट कप इत्यस्य 35.1 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सही

0: सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेन से व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Meanwhile, Prime Minister Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Mr. Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The government has issued a

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, धान की फसल पर भावांतर राशि दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार। और भारत इंग्लैंड के बीच

0: पहला टी20 मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा, दूसरा मैच शनिवार को होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ताकाइची की यह पहली भारत की आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और ये यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे हालधर किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इस धरा के वास्तविक शुभंकर हैं। किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा प्रदेश और देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक जी टैग मिल गया है। श्री यादव ने कहा,
2: धान पर भी हम भावांतर देने वाले, जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से हमारी सरकार खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक हर एक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हर एक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल कल जीएसटी के 9वें वर्ष के अवसर पर भोपाल के रविन्द्र भवन में सुगम कर सशक्त भारत थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी की 9 वर्षों की इस यात्रा से देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर तरीकों के जाल से मुक्ति मिली है। यह ऐतिहासिक यात्रा इस बात का प्रमाण है, जब केंद्र और राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं तो आर्थिक सुधार केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह जाते बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंगभवन में कल फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा पथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। गैलरी में भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री गौरव द्विवेदी और श्री गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा डीडी न्यूज के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रविंद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित प्रीबिड मीटिंग को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। कल उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कल भी दिनभर यहां रुक रुक कर बारिश होती रही। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडौरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से 9 प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में कल जबलपुर के मानस भवन में गौरव शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिवपुरी में अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पोहरी के ग्राम अनभौरा में लगभग 3 करोड़ रुपए की 150 बीघा से अधिक पट्टे की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। खंडवा में बीबी जी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ आज विकासखंड की ग्राम पंचायत बमन गांव आखई में होगा। वहीं बीबी जी रामजी योजना का आगरमालवा में जिला स्तरीय शुभारंभ 2 जुलाई को यानी आज सुबह ग्राम पंचायत पिपलिया चाचा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बारेलाल अहिरवार आज अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। झाबुआ कलेक्टर ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। शिविर में 67 यूनिट रक्तदान हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1189 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत प्रभा। मन्ना डे की आवाज में आइए सुनते हैं बूट पॉलिश फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सो योर प्लेस और माइन?
8: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
7: कॉन्डम? लेकिन हम तो
8: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV/AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
7: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
6: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे परख फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत सलील चौधरी का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: For another edition of our magazine program, Aaj Savere. So Mukesh, let us begin with some news headlines right away.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।

0: प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे।
2: Government has issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said that the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta not to roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. Employees Provident Fund Organization, EPFO, is officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal officers to credit the approved interest to members' EPF accounts. Civil Aviation Ministry has announced that India achieved a major milestone with approval of the country's first private point-in-space PINS instrument approach procedure for helicopter operations at Undavali Heliport. PINS procedures use advanced satellite-based navigation technology to enable helicopters to conduct safe and precise instrument approaches to heliports that do not have conventional instrument landing infrastructure. The ministry said that PNS is particularly beneficial during adverse weather conditions and in areas where ground-based navigation aids are not available. It was developed by the Airports Authority of India and approved by the Directorate General of Civil Aviation. The indirect talks between Iran and the US through mediator concluded in Doha yesterday. According to a statement by the Qatari government, both sides agreed to continue discussions after the funeral ceremonies for Iran's former supreme leader, Ali Khamenei, on the 9th of this month. Talking to media, US Vice President J.D. Vance said the Doha negotiations were progressing well, with technical level discussions already underway. He said the next phase would focus on Iran's nuclear program and added that the talks were being held from a position of strength after recent US military action.
1: और श्रोताओं, सनातन धर्म की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से नुवनगाम, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी।
2: FIFA World Cup news now. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time round of 32 and qualify for the round of 16. Youri

0: Gilmans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Belgium will now face the winners of the United States versus Bosnia and Herzegovina match in the round of 16. Last night, England defeated the Democratic Republic of Congo 2-1 in Atlanta, with Harry Kane scoring twice in the final 15 minutes. England will face co-host Mexico in the round of 16 on July 6th.
1: और अगर बात करें क्रिकेट की तो पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। पांच मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और अब समय है प्रमुख महानगरों की खबरों को जानने का। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़े समाचारों की। तो दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से राहत के लिए हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाले व्यापक और स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से नीचे के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से रियायत प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बड़े वाणिज्यिक भवनों और निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन और मिस्ट गन सिस्टम अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में कल से नई ईवी पॉलिसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। आइए सुनते हैं इस पर हमारी संवाददाता नितिका गुप्ता की खास रिपोर्ट।
2: नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को ₹30,000, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने वालों को ₹50,000 और N1 कैटेगरी के हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए ₹1,00,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही ₹30,00,000 से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। नई नीति में पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर ₹10,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इससे पहले केवल सीमित संख्या में ई कार्गो वाहनों को प्रोत्साहन और कुछ मार्गों पर नो एंट्री समय से छूट का प्रावधान था, लेकिन अब N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर ₹1,00,000 तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 13,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और उसके अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे 2-2 प्रपत्र वितरित करेंगे। इसके संबंध में दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं।
0: Moving to Chennai now, distinguished scientist and director general of DRDO, B.K. Das has said that Tamil Nadu has the potential to emerge as a major defense electronics manufacturing hub over the next decade, with the state's annual production opportunity projected to more than triple from ₹11,500 crore in 2030 to ₹37,000 crore by 2040. The growth is expected to rise in India's overall defense production, which is projected to increase from 35% in 2030 to 45% in 2040.

0: said that the state is targeting to increase its share of India's defense electronics production from 15% in 2030 to 25% by 2040, supported by Tamil Nadu Defense Industrial Corridor and favorable national policy initiatives. Happy Doctor, an initiative of Redwood Creations, launched India's first gratitude marathon for doctors. The initiative is to express society's appreciation for the medical fraternity while drawing attention to the growing mental and emotional challenges faced by doctors. The studies conducted by this initiative has assessed that doctors face risk of burnout, depression, anxiety, alcohol, and also suicide risks. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has appealed to Prime Minister Narendra Modi about critical modifications and relaxations of the VBGRAMG Act and asked for a reconsider some changes in the Act. In a letter to Prime Minister, he has said that the scheme imposed an additional financial burden of over Rs 5,000 crore under the new sharing pattern and restrictive operational implications on the state government. Mukesh?
1: Ab baat karte hain महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। सुभद्रा, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक की 113वीं जयंती के अवसर पर कल महाराष्ट्र में कृषि दिवस मनाया गया। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन में श्री नाइक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रत्नागिरी जिले में धान की खेती की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया और कृषि पर अल नीनो घटना के असर के बारे में जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कल मुंबई में बिजली वितरण की समस्याओं की समीक्षा के लिए बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिजली नेटवर्क को मजबूत करने और ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की गई।
0: Bengaluru News Now. The Greater Bengaluru Authority has launched a citywide safe footpaths campaign across all five city corporations to remove encroachments from footpaths and ensure safe movements for pedestrians. The drive, conducted under the direction of Greater Bengaluru Development Minister Krishna Baira Gowda, targeted unauthorized signboards, staircases, cables, construction debris, kiosks, pushcarts and other obstructions on major roads across the city. Officials have appealed to traders, commercial establishments and street vendors to voluntarily clear encroachments, warning that legal action will be taken against violators. We have another one from Bengaluru. Bengaluru South MP Tejaswi Surya has said that the Chief Commissioner of Railway Safety has directed the Bangalore Metro Rail Corporation Limited to investigate all metro service disruptions reported over the past 3 years and audit its operations and maintenance systems. According to a statement issued by the MP, the direction follows his letter to the Railway Safety Authority after the June 23rd disruption on the Purple Line.
1: उधर पश्चिम बंगाल में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में कल राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने घोषणा की कि नई सरकार राज्य में कोलकाता की ऐतिहासिक ट्राम सेवाओं को उनके पुराने गौरव के साथ फिर से शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि शहर के सभी 70 ऐतिहासिक ट्राम रूट फिर से चालू किए जाएंगे और दक्षिणेश्वर से कालीघाट तक नई ट्राम कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। राजारहाट न्यू टाउन में भी नई ट्राम सेवाएं शुरू करने की योजना है। इसके अलावा फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखने पर भी ध्यान दिया गया है।
0: Hyderabad News Now. The 9th GST Day was celebrated with great fervor in Hyderabad yesterday, marking 9 years since implementation of the Goods and Services Tax, one of India's most significant indirect tax reforms. Attending the event as a chief guest, Telangana High Court Chief Justice, Justice Apresh Kumar Singh, described GST as a landmark reform that completely transformed the country's indirect tax landscape since its launch on July 1, 2017. He noted that through digitalization, uniformity and a cooperative federal spirit, GST simplified tax structures and made administration transparent, efficient and taxpayer friendly.
1: तो ये थे श्रोताओं अब तक महानगरों से जुड़े मुख्य समाचार। अब कार्यक्रम आज सवेरे में वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। तो इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही मौसम की बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशनुमा हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अगर हम बात करें सड़कों पर, इस बारिश के बाद थोड़ा कहीं कहीं आपको ट्रैफिक जाम की समस्या महसूस हो सकती है। तो इसीलिए अपने घरों से

0: से निकलें और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचें। अगर बात की जाए मुंबई में तो आज शहर में उधर भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश तथा आंधी तूफान की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोलकाता में भी आज बारिश होने की संभावना है। उधर न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
1: And Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 29 degrees Celsius, maximum will be around 37. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees Celsius and a maximum of 31 degrees Celsius. And now Mukesh, before we go to history, we are going to talk about India Food Show. Okay, the Indian Pavilion has marked the largest ever participation at North America's Summer Fancy Food Show 2026. This premier specialty food exhibition brought together hundreds of Indian food brands, exporters and innovators under one roof. The exhibition, jointly inaugurated by Consul General of India, New York, Binay Srikant Pradhan, and internationally acclaimed chef Vikas Khanna, is showcasing the richness, diversity and quality of India's agricultural and processed food industry to buyers, retailers and distributors from across the world. We have a report.
2: The Indian Pavilion at Summer Fancy Food 2026 jointly celebrates the growing global demand for Indian food products while showcasing the richness, diversity and quality of India's agricultural and processed food industry to buyers, retailers and distributors from across the world. India's largest ever showcase at the Summer Fancy Food Show features exporters across a diverse range of categories including basmati rice, spices, ready-to-eat foods, beverages and value-added agricultural products, thereby reinforcing the country's position as one of the world's fastest growing food export destinations. A key attraction at the pavilion, Indian Mango Showcase, featuring 6 premium export varieties. The display highlights India's rich diversity of mangoes and reinforces the country's position as the world's leading producer of the fruit. Visitors are also experiencing a curated basmati culinary showcase where a range of dishes prepared using premium Indian basmati rice demonstrates its versatility across international cuisines. As global demand for authentic Indian food continues to accelerate, the Indian Pavilion stands as a powerful symbol of India's journey from its farms and factories to dining tables across the globe. Driven by the collective efforts of millions across the agricultural and food value chain, Vishal Das for Aaj Savere.
0: श्रोताओं, समय है इतिहास के पन्ने पलटने का, आपको उन जानकारियों से रूबरू कराने का जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, या आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनकी आपको आज जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस कड़ी में बात करते हैं पहले आज के दिन यानी 2 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो वर्ष 1698 में आज ही की तारीख को थॉमस सावेरी ने भाप इंजन को पेटेंट कराया था।
1: 1897, British Italian engineer Guglielmo Marconi obtains a patent for radio in London. Formal reunification of North and South Vietnam happened this day in 1976. And 1900, second modern Olympics Games opens in Paris.
0: और 1777 की बात करें तो अमेरिका के वर्मेंट शहर में दास प्रथा की समाप्ति भी आज ही की तारीख को हुई थी। स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने वर्ष 1983 में मद्रास के निकट कलपक्कम में आज ही की तारीख से काम करना शुरू किया था। अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जन्मदिन या जयंती है।
1: यस
0: जी,
1: 2 जुलाई 1843, डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, द फादर ऑफ होम्योपैथी, एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट इन अ जेंटल होलिस्टिक मैनर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज दैट अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स अ सर्टन डिजीज कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट द सेम डिजीज। दिस इज रेफर्ड टू एज अ लॉ ऑफ सिमिलर्स। एंड आफ्टर स्टडिंग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर हैनेमन लेफ्ट द प्रैक्टिस इन 1784 एंड डिस्कवर्ड होम्योपैथी 1796, developed as an effective treatment system. His medical approach gained popularity across the globe, and today, of course, homeopathy is recognized as a valid medical practice in several countries.
0: आज श्रोताओं, पुण्यतिथि है असित भट्टाचार्य की। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। असित भट्टाचार्य शुरुआत से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे और उन्होंने क्रांति दल के सदस्य के रूप में भी सदस्यता ग्रहण की थी। 31 मार्च 1933 को हबीबगंज में एक डकैती हुई। जिसमें असित भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इसके बाद

0: में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में मां भारती के इस महान सपूत को फांसी दी गई।
1: Remembering O.V. Vijayan, author, cartoonist, who was an important figure in modern Malayalam language literature. He was born in Palakkad, Kerala, 1930. Vijayan authored many volumes of short stories, which range from the comic to the philosophical and show a diversity of situations, tones and styles. He translated most of his own works from Malayalam into English. He was also an editorial cartoonist and political observer, worked for news publications including The Statesman and The Hindu. And today is tributes to Ernest Hemingway, American novelist, short story writer, who received a Nobel Prize for Literature in 1954 for the classic Old Man and the Sea, that also earned him the Pulitzer Prize in 1952. His important book, 1925, a collection of stories called In Our Time, was published in New York City. It was originally released in Paris in 1924.
0: श्रोताओं, आज जयंती है मोहम्मद अजीज की। वे भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक थे जिन्होंने मुख्यतः बंगाली, ओडिया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए। उन्होंने कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में गायक के तौर पर अपना करियर शुरू किया। साल 1984 में वे मुंबई आए। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंबर थी, जो 1984 में रिलीज हुई। मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला गीत गाया था। उन्हें 80 और 90 के दशक में मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। अगर हम बात करें उनके प्रसिद्ध गानों की, तो आपके आ जाने से, कागज कलम दवात, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, मेरे दो अनमोल रतन, माय नेम इज लखन, तुझे रब ने बनाया होगा, और ना जाने कितने ही ऐसे गाने हैं जो आज भी लोगों की जबान पर चढ़े हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ ये सदाबहार नगमे।

0: श्रोताओं, जयंती है कालीचरण चरण पाणी ग्रह की। वे प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार थे। वे अपनी महान कृति मतीरा मनीषा के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें उड़िया साहित्य में योगदान के लिए वर्ष 1971 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिंदी चरण के काव्य में प्रणय चेतना के मुख्य आधार कुछ इस प्रकार हैं कि प्रेम लज्जा का विषय नहीं, वो युवाओं का अधिकार है। प्रेम शाश्वत है। प्रेमी एक दूसरे के परिपूरक तथा मुक्ति के मार्ग के पथ प्रदर्शक भी हैं। और इसी के संदर्भ में हिंदी का एक दोहा भी है कि इस असार संसार में केवल प्रेम रतन धन सार। क्योंकि प्रेम से जीवन आकर्षक बनता है, इसी प्रेम को पाने के लिए कवि कालिंदी चरण बार बार जन्म लेने की तमन्ना रखते हैं। जिस संसार को लोग दुखमय मानते हैं, वो संसार प्रेम के कारण स्वर्ग बन सकता है।
1: And friends, another famous novelist took birth this day. Hermann Hesse, German writer and poet, was awarded the Nobel Prize for Literature in 1946. He published his first book, A Collection of Poems, in 1899. And today is also the birthday of singer-songwriter, actress Michelle Branch. Singing career started in 2000 with two smash albums, Spirit Room and Hotel Paper. She earned a Grammy with Carlos Santana for the best pop collaboration for vocals.
0: आज ही जयंती है आशालता बावगावंकर की। वे महाराष्ट्र व मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी। दूरदर्शन पर उन्होंने अपने कई धारावाहिकों से भी घर घर में लोगों के दिलों में खूब पहचान बनाई। वे गोवा की रहने वाली थी और उन्होंने सबसे पहले कोंकणी और मराठी नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुकेश और सुभद्रा को दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: Stay tuned for coming up now is Samachar Prabhat, the Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar. Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी।

0: भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

0: शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं डूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी की दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने जेल में दो बड़ी

भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4थी लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखी। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें। कार्यक्रम

किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति भी स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के धान उत्पादक किसान अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ लेंगे। उन्होंने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब जीआई टैग मिल गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कल फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वेदिका का अनावरण किया गया। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी डीडी न्यूज के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे।
3: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
4: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
3: हाँ भाई समझा।
4: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा के युगलसर में आइए सुनते हैं रोजा फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं पीके मिश्रा ने और संगीत ए आर रहमान का है।

0: पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: यशुदास और हेमंती के युगल स्वर में आइए सुनते हैं इंदु जैन का लिखा गीत, संगीत राजकमल का। फिल्म का नाम है चश्मे बद्दूर।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं कमर जलालाबादी का लिखा गीत। आवाजें आशा भोसले और साथी की, फिल्म का नाम है फागुन।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी।

सुरेश वाडकर और साथी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे चांदनी फिल्म का गीत। संगीत शिव हरि का था।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सिलसिला फिल्म का गीत। गीत गुलजार का और संगीत शिव हरि का था।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे विजय फिल्म का गीत, संगीत शिव हरि का था।

लता मंगेशकर और साथी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म का गीत, संगीत शिव हरिकथा।

उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे डर फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में गत माह प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के दौरे, जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन और योग दिवस आदि प्रमुख घटनाएं चर्चा में रहीं। वहीं जून माह के आखिरी में शुरू हुई मॉनसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में बोनी का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने दो दिवसीय बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्णा आजीविका स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने समूह द्वारा तैयार किए गए मावा और रबड़ी का स्वाद लिया, महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वसहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कुकरू प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित होने की अपार संभावनाएं रखता है। प्रवास के दौरान रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्रामीणों से आत्मीय भाव से खुले मिले। ग्रामीणों ने स्थानीय कुरकू भाषा में पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। इसी बीच प्रदेश व्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत खेड़ी सावलीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल संचालन के लिए जिलेवासियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया। उधर खरीफ सीजन में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसानों को निर्धारित पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर जिले में एक अनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत घाट पिपरिया में आयोजित किया गया। आयोग की ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार करवाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पपेट शो रहा, जिसने स्थानीय भाषा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में पेश किया। उधर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उनका उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रतिमाह 9 और 25 तारीख को प्रधानमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. जगदीश ठकोरे ने बताया कि जिले में 25 जून को आयोजित प्रधानमंत्री

0: मातृ सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 508 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और 222 हाई रिस्क चिन्हित कर 50 की सोनोग्राफी भी की गई। वह आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का 23 जून से 25 जून तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किशोर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। उधर शहर में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त समाज का निर्माण करना रहा। कार्यक्रम में नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। उपस्थित युवाओं को नशा मुक्ति हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जन अभियान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पंवार उपस्थित थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं बेगम अख्तर के गाए गीत से।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। मेहंदी हसन की आवाज़ में पेश है ये गज़ल, कलाम अहमद फराज का है।

आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लता मंगेशकर के स्वर में ये प्रस्तुत है ये गीत।

आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। मन्ना डे की आवाज़ में लीजिए सुनिए ये गीत।

आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में प्रस्तुत है ये भजन।

0: इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: पुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 40 से अधिक जिलों में तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह और भेजती हूँ आप तक मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अगर धरती की धड़कनों को सुनना हो तो किसी जंगल के एकांत में कुछ पल बिताइए, किसी पेड़ की छाया में बैठकर देखिए, वहां हवा केवल बहती नहीं कितनी ही स्मृतियां साझा करती है कि कभी ऐसे ही अरण्य में ऋषियों के मुख से ऋचाएं फूटी थीं, वन के एकांत गीत में ही वेदों ने जन्म लिया था, कि कभी ऐसे ही अरण्य में श्री राम भटके थे अपनी सीता के लिए, कभी ऐसे ही वनों की नीरवता में ईश्वर को ढूंढते बुद्ध ने स्वयं को पा लिया था। वृक्षों की पत्तियां झूमती हुई समय के गीत गुनगुनाती हैं और जंगल का सन्नाटा इन वृक्षों के प्रति कृतज्ञ होता हुआ कहता है कि तपस्वियों की तरह धरती पर घोर साधना में लिप्त जान पड़ते हैं ये वृक्ष, जिनका सब कुछ दूसरों के लिए है। निश्चित ही ये वृक्ष वाल्मीकि, दुर्वासा या बुद्ध के वंशज होंगे, तभी तो ये ऋषिपुत्र जब भी लिखते हैं वसंत ही लिखते हैं। श्रोताओं, दरअसल पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो ऋतुओं के इतिहासकार हैं, पीढ़ियों के साक्षी हैं और आने वाले कल के सबसे विश्वसनीय प्रहरी भी। पेड़ों से ही हमारा कल, आज और कल है। श्रोताओं, हमारे देश में इन्हीं पेड़ों के उत्सव का सप्ताह होता है वन महोत्सव, जो जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती के लिए, हमारे आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार एक पौधा ही है, क्योंकि एक पौधा केवल आज को ही नहीं आने वाले कल को भी हरा भरा करता है। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, हम और आप मिलकर वन महोत्सव मनाएंगे, बात करेंगे पेड़ों की, हरियाली की, पेड़ों से जुड़ी आपकी यादों की और आपके संकल्प की। बताइए हमें कि आपकी जिंदगी का वो एक पेड़ कौन सा है जिससे आपकी सबसे आत्मीय यादें जुड़ी हुई हैं। किसी पेड़ से आपका कोई खास रिश्ता हो तो बताइए हमें, और पेड़ों से जीवन का क्या रिश्ता है ये भी बताइए। साथ ही बताइए हमें कि वन महोत्सव आप कैसे मना रहे हैं, क्या संकल्प है आपका इस बरस। हमें उम्मीद है कि आपकी बात किसी न किसी के मन में हरियाली का एक नया बीज जरूर बोएगी। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं खेरो कला, ग्राम खेरो कला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश से रमेश नायक बोल रहा हूँ। बहन जी, कौन बोल रही हैं आप?
0: मैं सुनीता बोल रही हूँ।
1: अरे सुनीता सिंह, दो साल

0: से इंतजार किया है आपका, जो है सुनीता सिंह से बात हो जाए।
1: जी जी जी जी,
0: मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोगों का सच बोल रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं आपका जो है आवाज अच्छी लगती है बोलने की, और आपको बोलने का आइडिया भी बड़ा अच्छा है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश नायक जी कैसे हैं?
0: ठीक है जी।
1: हाँ, और मौसम कैसा है?
0: मौसम तो परसों बारिश हो गई काफी, अब तो बोनी भी चालू हो गई।
1: बिल्कुल, तो बारिश का मौसम आ गया है, और आप जानते ही हैं कि जुलाई के महीने का जो पहला सप्ताह होता है उसे हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। बारिश के
0: जैसे आपने कहा कि पेड़ पौधे लगाइए, शासन भी सरकार भी इसी पर जोर दे रही है बहन जी।
1: जी जी,
0: पेड़ लगाना भी चाहिए और लगाए लोग बाग, उसकी परवरिश करें। जो नहीं कि पेड़ लगा दिया और फिर छोड़ दिया, परवरिश करें उसकी, जैसे जानवर ना खा पाए, पानी डालते रहे।
1: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सिर्फ पौधा लगा देना आपका दायित्व नहीं है, उसकी परवरिश भी करें, उसको संरक्षण भी दें। हम ये जानना चाह रहे थे रमेश जी कि पेड़ों से जुड़ी कोई आपकी याद हो, बचपन की कोई याद हो, अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो पेड़ों के बीच खेलते भी हैं, पेड़ों पर चढ़कर भी खेलते हैं, है ना? तो कोई बचपन की याद हो, किसी पुराने पेड़ की याद हो तो उसका आप जिक्र कर सकते हैं।
0: अब पेड़ की याद तो कुछ नहीं, पौधे तो लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं बहन जी, यहाँ के छोटे में बस वो पेड़ों पे चढ़ के खेला करते, गिल्ली डंडा कहीं कुछ, ये यही याद है। और पेड़ काटने वाले एक दो आदमी नहीं है, कई लोग काटते हैं। अब बताओ वन या जंगल कैसे रहे, और इसका बहुत जरूरी है, इसलिए शासन भी जो है इस पर गौर कर रही है कि पेड़ लगाओ, माँ के नाम लगाओ, उसकी परवरिश करो। ये लगा देने से कुछ नहीं होता है, उसकी परवरिश भी करने पड़ती, जानवरों से बचाया, बकरियों से, कहीं गाय भैंसों से, या उसकी जो है तारबारी भी करनी पड़ती है बहन जी, सुनीता जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो रमेश जी ये बताइए कि आपका क्या संकल्प है, आप कितने पेड़ लगाएंगे इस बार?
0: नहीं, हमने लगाए भी है और भी जो है लगाएंगे हम।
1: कौन कौन से पेड़ लगाए हैं?
0: ऐसे जगह छोटे मोटे पेड़ लगाना नहीं होता है, पेड़ तो लगा तो बड़ा का या पीपल का या महुआ का।
1: नीम,
0: ये ठोस पेड़ होते हैं।
1: तो आप कह रहे हैं कि नीम, पीपल, बड़, है ना, आंवला, इस तरह के अगर हम पौधे लगाते हैं तो आने वाले समय में
0: हो, जैसे ये खटाऊ पेड़ होते हैं, ये 100-100, 200-200 साल, 500-500 साल की उम्र होती है इनकी।
1: जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी उम्र भी लंबी होती है, तो आपके लगाने का जो फायदा है वो लंबे समय तक लोगों को मिलेगा।
0: जी जी जी जी, अब आज फार्मेसी प्रोग्राम तो है नहीं बहन जी।
1: नहीं, आज तो हमारी पसंद का गीत आप सुनेंगे, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा।
0: सुनीता जी
1: जी,
0: गीत हम ठीक नहीं, हम फरमाइश नहीं बता रहे, लेकिन कोई गीत सुनवाना तो रफी की आवाज हो या लता की आवाज हो, इनमें से कोई पुराना गीत सुनवा दे। एक मोहम्मद रफी, एक लता मंगेशकर, इनका कोई सानी नहीं है, ना कोई गायक हुआ है ना होगा।
1: बिल्कुल, तो रमेश जी आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। अम्बेडकर चौक टेबर वार्ड खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम। धन्यवाद
0: राम सखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात आपकी गीत
1: मैम।
0: हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के विषय पर? हम वन महोत्सव मना रहे हैं।
1: वन महोत्सव बहुत जरूरी है। वन महोत्सव इस बार हमारे क्षेत्र में खुरई विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख पेड़ों का लगाना निश्चित हुआ तय हुआ है, जिनमें आपके फलदार वृक्ष ज्यादा रहेंगे। और हर साल तो लगते हैं, और हम व्यक्ति के तौर पे एक नीम का पेड़ हमने लगाया था भोपाल में। उस समय हम लोग भोपाल रहते थे,
0: जी जी
1: स्कूल थी बारह महल के पास।
0: जी
1: आज वो नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, फल फूल रहा है।
0: क्या बात है
1: जी। और जी है मैम के नीम भारत का वैद्य है।
0: जी जी क्या बात है
1: जी। नीम भारत का वैद्य है। नीम, आंवला और आपका वो जामुन का पेड़ जी लगा है तो बहुत अच्छा फलदार भी है और आपके लाभदायक भी है। एक पेड़ लगा है जामुन का, लगा है हमारे यहाँ 50 साल पुराना। जामुन के फल भी देता
0: जी,
1: है।
0: जी जी
1: जामुन के फल तो बहुत औषधि कारक
0: गुणकारी होते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो औषधीय पेड़ हैं, पौधे हैं, जैसे आपने नीम
1: जी
0: की बात की, आंवला, जामुन, इस तरह के अगर पेड़ लगाते हैं तो दोहरा लाभ हो जाता है ना?
1: जी मैम।
0: बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो आप साझा कर सकते हैं।
1: बचपन की वही तो बता रही मैडम कि एक पेड़ लगाया था नीम का हम लोगों ने। अभी वो नीम का पेड़ है, एक जामुन का लगाया था, अभी जामुन का पेड़ भी है। बचपन की लगभग चल रहा है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: 50 साल पहले हमारे पिताजी वगैरह ना लगा था,
0: आप
1: हम
0: लोगों ने
1: लोग
0: मिलकर लगाया था।
1: आपके आंवला भी लगा है, नींबू भी लगा है,
0: बहुत सुंदर बात।
1: जामुन भी लगा है।
0: तो देखिए, पिताजी ने पेड़ लगाया, उसके फल आप खाते हैं। आप जो पेड़ लगाएंगे, आने वाली पीढ़ी उसका फल खाएगी, उसका लाभ
1: बिल्कुल
0: लेगी।
1: बिल्कुल
0: इसलिए ये जिम्मेदारी
1: बिल्कुल
0: हमारी होती है कि हम
1: बिल्कुल
0: वृक्षारोपण जरूर करें। तो राम सखी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, सनी शर्मा, गंजवासोदा, राजनगर।
0: तो सनी जी कैसे हैं?
1: दीदी बढ़िया हैं।
0: अच्छे हैं। तो आज के विषय पर क्या कहेंगे? हम वन महोत्सव मना रहे हैं, पेड़ों का क्या महत्व है जीवन में, वनों का क्या महत्व है जीवन में, और पेड़ों से जुड़ी कोई याद अगर आपकी हो तो वो भी साझा कर सकते हैं आप।
1: पेड़ हमको फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं।
0: बिल्कुल। और जो पेड़ है वो बारिश को बुलाकर भी ले आते हैं।
1: जी जी जी जी
0: जी। और कितनी चीजें उनसे मिलती हैं, फल फूल लकड़ी सब कुछ पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ों से ही जीवन है ना? तो अभी जब हम वन महोत्सव मना रहे हैं तो आप बताइए कि कौन सा पौधा लगाने का आपने निश्चय किया है?
1: नीम का।
0: नीम का पौधा लगाएंगे, किस लिए?
1: फल भी मिलेंगे, छाया भी मिलेगी
0: और ऑक्सीजन भी, है ना? बहुत गुणकारी पौधा है नीम का, जरूर लगाना चाहिए नीम का पेड़। और कोई याद अगर बचपन की हो, पेड़ों के साथ तो हमारा बचपन बीतता है, अगर खास तौर पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, है ना? तो बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकते हैं।
1: पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों पर झूला डालना।
0: सावन के महीने में पेड़ों पर झूला डालना। हाँ
1: दीदी।
0: अभी भी डालते हैं?
1: हाँ दीदी, अभी भी डालता है।
0: क्या बात है। तो देखिए, पेड़ों के साथ एक आनंद है, जीवन का उत्सव है ना? तो हमें बहुत अच्छा लगा सनी जी आपसे बात करके, और जो आपने कहा है कि आपका संकल्प है एक नीम का पौधा आप लगाएंगे, जरूर लगाइएगा। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि पौधा लगाने के बाद भूल मत जाइएगा, जैसे एक छोटे से बच्चे को परवरिश की जरूरत होती है, पेड़ों को भी परवरिश और संरक्षण की आवश्यकता होती है।
1: रोज पानी डालना,
0: जी
1: खाद डालना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। रोज पानी डालना, खाद डालना और उसका संरक्षण करना कि उसे जानवरों से कोई हानि ना हो, जानवर उसे खा ना जाए, है ना? तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम,
0: नमस्कार। नाम बताइए।
1: नमस्कार। जानकी गुप्ता, ग्राम भांगवन थनंगा, जिला टीकमगढ़ मकड़ी से बोल रहे।
0: जानकी जी टीकमगढ़ से बोल रही हैं, कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, और फोन लग जाता तो और अच्छे हो जाते।
0: बिल्कुल, बहुत देर से हमारे श्रोता प्रयास कर रहे होते हैं, और जब फोन लगता है तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत का फल मिल गया हो, है ना
1: हम रोटी बना रहे थे, इसी में
0: जी।
1: फोन लगाए तो
0: हाँ
1: लग
0: हाँ
1: गया।
0: रोटियां बना रही थी आप?
1: हाँ, फोन रखे थे
0: अच्छा
1: पास में, लगा नंबर था इसी में डाल
0: अच्छा
1: कर रहे थे, इसलिए लग गया।
0: बहुत अच्छी बात है कि काम के बीच भी आपको आकाशवाणी की सुध रही, याद रखा आपने।
1: रेडियो सुनते रहे थे।
0: हाँ, तो आज के विषय पर क्या कहेंगी? वन महोत्सव पर हम बात कर रहे हैं।
1: मैं ये कहने चाहती कि वृक्ष अपन को लगाने चाहिए, अपन को हवा भी देते हैं और फल भी देते हैं, और उस वृक्ष की सब वर्षा भी होती है जहाँ वृक्ष ज्यादा लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल। तो आपके आसपास किस
1: हमारे
0: किस
1: आसपास, हमारे खुद दरवाजे के पास नीम लगी, बहुत बड़ा वृक्ष नीम का।
0: अच्छा नीम का पेड़ है आपके घर के
1: हाँ, और
0: पास?
1: हम अपने आंगन में लगाए, एक मीठी नीम का पेड़ लगाए, एक
0: हाँ
1: गुलाब का पेड़ लगाए।
0: जी। तो इस बरस वन
1: इस साल
0: महोत्सव
1: हम
0: में
1: और दूसरा पेड़ लगाएंगे, और
0: कौन सा लगाएंगे?
1: नीम ही का लगाएंगे, एक और मीठी नीम का।
0: मीठी नीम। तो चलिए, ये तो छोटा
1: हाँ
0: सा पौधा हुआ, लेकिन अगर कुछ बड़े फलदार वृक्ष हम लगाते हैं या कुछ बड़े पौधे लगाते हैं जो कि आगे चलकर बड़े वृक्ष बनते हैं, जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप पीपल का कोई पौधा लगा दें, या
1: हाँ
0: आप
1: मुझे सही कहीं लेके हमारे यहाँ ऐसी जगह ना
0: अच्छा
1: लगाने
0: अच्छा
1: के। हाँ,
0: जी। फिर भी गांव में सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से किसी एक स्थान पर भी
1: ऐसे
0: लगा
1: ऐसे तो
0: सकते
1: बहुत
0: हैं।
1: पेड़ लगे हमारे ऐसे
0: हाँ
1: अगल बगल में, बहुत
0: जी
1: ज्यादा मीठी नीम के लगे, पीपल के लगे,
0: जी
1: बरगद का लगा
0: तो
1: पेड़।
0: देखिए, किसी ने कभी लगाया था तो ये पेड़
1: हाँ
0: अभी
1: लगाया है
0: है ना, तो ये पेड़
1: अभी
0: आज आपके
1: अभी
0: लिए
1: कुछ
0: हैं।
1: कुछ कुछ पेड़ के पीपल के छोटे छोटे भी हैं।
0: तो उनको पानी देते रहिए, उनको संरक्षित करिए। और हम ये जानना चाह रहे थे जानकी जी कि बचपन हमारा अगर ग्रामीण इलाके में बीता है तो पेड़ों से बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो कुछ याद अगर रोचक सी हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकती हैं
1: हाँ,
0: हमसे।
1: रोचक है कि जब छोटे थे हम, तो नीम के अमरूद के पेड़ है ना,
0: हाँ
1: उस पर
0: हाँ
1: चढ़ते थे।
0: और अमरूद खाते
1: एक जन के बगीचा में लगे थे, तो
0: जी।
1: जाते थे उस पर
0: हाँ
1: चढ़ते थे, फिर अमरूद खाते थे और छुपा छुपल खेलते थे पेड़ों पे।
0: वाह वाह वाह, पेड़ों पर आप मतलब
1: हाँ
0: छुपा छुपोवल खेलती थी, बहुत अच्छी बात है। और कई बार तो पेड़ पर बैठकर ही हम फल खाया करते थे
1: हाँ
0: अमरूद के,
1: मैम,
0: है
1: चढ़
0: ना?
1: जाते थे पेड़ों पे।
0: हाँ, मुझे तो याद है कि मैं अपने अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद भी खाती थी और वहीं पढ़ाई भी करती थी।
1: हाँ, सही कह रही हो मैम।
0: तो चलिए, पेड़ों की अच्छी याद आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत
1: थैंक यू मैम।
0: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताएं।
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला विदिशा।
0: अच्छा, भागचंद साहू जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है?
1: मौसम बढ़िया है, गंज वासोदा में थोड़े बदल हो रहे हैं।
0: तो बारिश आ रही है और वन महोत्सव मनाया जा रहा है। मौसम को देख कर ही जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, तो हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर कुछ कहें, अपने विचार रखें वन महोत्सव पर, वनों के महत्व पर, पेड़ों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं दीदी, देखो हर व्यक्ति को पेड़ों की कटाई बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये बरसात, इसी के कारण से बरसात डिफरेंस हो रही है
0: जी।
1: है आदमी क्या है, वृक्ष वगैरह काट रहे हैं, पेड़ पौधे कम लगा रहे हैं, पेड़ पौधे ज्यादा लगाए अपन ऑक्सीजन मिलेगी है और छाया भी मिलेगी इस प्रकार से, उनमें पानी समय समय पानी दें, उनकी छटाई करें,
0: उसकी परवरिश करें।
1: हमने तो एक नीम का पेड़ लगाया था दीदी।
0: अच्छा,
1: वो अभी लगा है।
0: अच्छा, कब लगाया था?
1: हमने दीदी कम से कम हो गए 20 साल हो चुके हैं उसको।
0: वाह, तो ये तो बड़ा हो गया होगा पेड़।
1: अरे बहुत बड़ा है दीदी, इतना अच्छी छांव है उसकी, वहीं बैठते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हाँ हाँ, नीम का पेड़ कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
0: बहुत अच्छा होता है, गुणकारी पेड़ है ना, कई औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं। आप इस बरस कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं
1: दीदी? अब तो हम देखो अब उसका लगाएंगे, आम का पेड़ लगाना चाहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: आम का पेड़ लगाएंगे जिससे सबको फल भी मिले खाने के लिए। हाँ। और एक प्रकार से छाया भी मिले।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है भागचंद साहू जी कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले और अब आप कह रहे हैं कि आम का पेड़ लगाएंगे जो कि फल भी देगा।
1: आम का एक पेड़ जरूर लगाएंगे, माँ के नाम लगाएं।
0: क्या बात है, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए।
1: बिल्कुल लगाएंगे जी, हमारा वादा है।
0: तो भागचंद साहू जी, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले जो बहुत बड़ा हो गया है, छाया देता है, और इस बरस आप आम का पेड़ लगाने वाले हैं। तो इस संकल्प को बनाकर रखिए और अपने साथ और भी लोगों को जोड़िए। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें फोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: गोविंद पाटीदार।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मंदसौर जिले से।
0: मंदसौर जिले से। तो गोविंद जी, आज हम वन महोत्सव पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वनों का क्या महत्व है? जंगल कभी गए हैं आप?
1: जी हाँ।
0: तो किस तरह का?
1: वनों का तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है मैम। पहले के जमाने में इतने जंगल थे कि मतलब बिना कहे बारिश हो जाती थी। मतलब अपने आसपास का जो वातावरण रहता था वो बहुत ही शुद्ध और अच्छा रहता था।
0: जी जी, वन ज्यादा होते हैं तो पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं।
1: हाँ, आकर्षित करते हैं। हाँ, सही बात।
0: और बारिश तो होती ही है, मिट्टी के कटाव को वो रोकते हैं। तो कौन सा पौधा लगाएंगे इस साल आप?
1: जी इस साल तो हम आम का पौधा लगाएंगे।
0: आम का? अच्छा, तो अकेले लगाएंगे या आपके साथ कुछ और दोस्त भी हैं?
1: जी हमारा तो खेती बाड़ी है, जो हम तो बोले अकेले लगाएंगे। मैं हर साल हमारा तो पौधे लगाने का काम रहता, कभी नींबू का लगा लिया, कभी अपने फूलों के लगा लिया, कभी पीपल का लगा लिया, कभी नीम का लगा लिया, कभी इमली का लगा लिया।
0: अच्छा,
1: तो ये क्या है कि छायादार वृक्ष भी रहते हैं मैम, और आगे अपने को फायदा भी है इनसे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी फायदा है, आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा है, इसलिए वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। अच्छा, बचपन की कोई याद हो आपको, अगर जंगलों से जुड़ी हुई, वनों से जुड़ी हुई या पेड़ों से जुड़ी हुई कोई याद हो?
1: मैम याद है, पहले बचपन में छोटे थे तब हमारे दादाजी आम का वृक्ष लगाते थे खेतों पे, तो वो छोटे छोटे वृक्ष जो रहते थे ना, तो उस समय हम वो कलम तारी का जो खेल होता था पहले, जो उस हिसाब से वो खेल याद है बचपन का, हम खेलते थे छोटे।
0: तो आप मतलब पेड़ों पर आप लोग खेलते थे?
1: जी हाँ।
0: बहुत अच्छी बात
1: है। खेल ही पेड़ के वृक्ष का ही था मैम।
0: तो क्या करते हैं इस खेल में?
1: अरे जैसे एक लकड़ी ले लेते हैं, चार पांच जो साथ में अपने मित्र लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऊपर वृक्ष पे चढ़ के उस लकड़ी को फेंकते थे, इतना दूर फेंकते थे कि जहाँ तक जा सके उसको फेंकते, तो वो एक जो लड़का जो रहता वो उसको लेके ना वापिस वृक्ष के नीचे रख देता उस लकड़ी को, और ऊपर पेड़ पे चढ़ के हम सबको पकड़ने के लिए आते थे।
0: क्या बात है।
1: एक एक करके जो नीचे कूद के ना उस लकड़ी को हाथ लगा रहे उसको तो पकड़ नहीं पाता, वो जो ऊपर रहते उनको पकड़ते थे।
0: तो चलिए, बड़ा ही रोचक सा ये खेल था। कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे भी इसको खेलें, उन्हें सिखाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी मेहनत होती होगी कि स्वास्थ्य भी बनता होगा इसमें, है ना?
1: स्वास्थ्य के लिए तो खेल बहुत लाभदायक होते हैं।
0: जी जी। तो गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्यारी मीठी सी याद भी आपने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम सुमत कुमार जैन, रिटायर्ड शिक्षक, पिंडरई जिला मंडला से बोल रहा हूँ मैडम।
0: आज वन महोत्सव पर हम बात कर रहे हैं और आपने जैसा कि बताया कि आप एक शिक्षक रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आप?
1: वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है मैडम। ये वन महोत्सव जो मनाया जा रहा है ये भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन से भरपूर, छांव से भरपूर जीवन जीने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: माताएं बहने कुछ वृक्षों की, जैसे बड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इनकी पूजाएं भी करती हैं और इनको बहुत महत्व भी देते हैं। तो मैं समस्त लोगों से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण और जीवन को सफल बनाएं।
0: तो बहुत ही सुंदर।
1: मैं अपने स्कूली जीवन में भी नीम के पेड़, पीपल का पेड़ और कंजी का पेड़, ऐसे पेड़ों को लगाते रहता था और उनकी देखभाल भी करता था और आज वो जीवित भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जैसा संदेश आपने दिया है, कुछ इसी तरह का आह्वान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, चाहे धरती माता के नाम या अपनी माता जी के नाम, एक पेड़ लगाने का आह्वान उन्होंने भी किया है देशवासियों से। तो इस बरस आप कौन सा पेड़ लगाएंगे?
1: मैं इस वर्ष तो आम का पेड़ अभी लगाया हूँ। उनकी गोहियाँ जो है, अच्छे प्रकार की गोहियाँ हैं, उनको मैंने अभी लगा दिया हूँ अपने घर के सामने। अब वो जब छोटा पौधा बन जाएंगे तो मैं उनको कहीं व्यवस्थित लगाने का प्रयास करूंगा।

0: तो आप कुछ लोग
1: फलदार वृक्ष जीवन में सफलता, फलदार वृक्ष जीव सब लोगों को खाने पीने का मौका भी मिलता है, पेड़ पशु पक्षियों को भी उसमें आवास बनाने की सुविधा मिल जाती है। जीवन में सफलता ही देते हैं मैडम, पेड़ पौधों को काटना या उनको नुकसान पहुंचाना हमारे मानव जीवन को खतरा पैदा करना है।
0: बिल्कुल, तो आपका संदेश लोगों तक पहुँचा सुमित कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जसराम जाटव
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला सीपी, गाँव का नाम जोराई।
0: जोराई से जसराम जाटव जी बोल रहे हैं। क्या कहेंगे वन
1: हाँ,
0: महोत्सव पर? किस तरह से आपके यहाँ वन महोत्सव मनाया जा रहा है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण किया जाता है इस सप्ताह में, तो वन महोत्सव में आप लोग क्या कर रहे हैं और पेड़ों का क्या महत्व है, आप क्या कहेंगे?
1: पेड़ों का मतलब यह है मैडम, क्या पेड़ लगाना चाहिए तो इससे छाया मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है मैडम, इससे बहुत अच्छा रहता है। हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कौन सा पेड़ लगाएंगे इस बरस?
1: या मैडम इस तरह पेड़ लगाएंगे, क्योंकि इस तरह पेड़ लगाएंगे तो बरसात आएगी तो अच्छा अच्छे से हो जाएगा ना।
0: हाँ, ये तो महत्व की बात हो गई। आप कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं?
1: आम का पेड़ लगाने की सोच रहे हैं मैडम।
0: आम का पौधा लगाएंगे, और उसको जब लगाएंगे तो उसकी
1: हाँ
0: परवरिश भी कीजिएगा और उसको संरक्षण भी दीजिएगा, ताकि वो एक बड़ा पेड़ बन सके, है ना?
1: हाँ वो तो सही है।
0: तो कोई

0: याद है बचपन की पेड़ों से जुड़ी हुई?
1: हाँ मैडम, क्या बचपन की याद है, वो क्या है, हम हमारे दोस्त के साथ में रहते थे, बहुत अच्छा लगता था, खेलना खेलना कूदना अच्छा लगता था मैडम हमको।
0: तो पेड़ों पर चढ़ के खेलते थे?
1: हाँ मैडम, जो क्या है, पहले पेड़ पे जो पेड़ वाला जो खेल नहीं होता है, वो खेल को खेलते थे पहले।
0: कौन सा खेल?
1: अरे जो पेड़ पे खेलते है ना, जो लुका छुपी, क्या बोलते है,
0: लुका छुपी
1: बोलते,
0: क्या बोलते हैं,
1: रखदामन बोलती थी मैडम। तो क्या है, इस पे डंडा, एक एक एक लकड़ी का डंडा लेते थे, तो इस पे पेड़ पे लगा देते थे।
0: हम समझ गए, हमारे एक और श्रोता ने इस खेल का नाम बताया था, लुका छुपी की भी बात कुछ लोग करते हैं इसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके आसपास इस तरह के खेल हैं जो पेड़ों से जुड़े हुए हैं और इन खेलों को आप खेलते हैं। आज के बच्चे भी खेलते हैं?
1: हाँ मैडम, क्या बच्चे भी खेलते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधों के साथ जब आप रहते हैं तो एक रिश्ता उनसे बनता है आपका, है ना। बचपन की एक याद आपके मन में है कि आप किस तरह पेड़ों के साथ खेलते थे। तो जसराम जी, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आम का पौधा जरूर लगाइएगा और कुछ लोगों को और प्रेरित कीजिएगा कि वो भी पौधे लगाएं। तो आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम जी आपका स्वागत, मैं आपका नीमे सोता बोल रहा हूँ जी। जय नरसिंहदेव एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: कमलेश कहार जी, आपने हमारा स्वागत किया जबकि स्वागत हमें करना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: सब कुशल है मैम जी, हरियाली के बीच में खड़ा हूँ मैम जी मैं आज।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे, वन महोत्सव किस तरह से मनाया?

0: जा रहा है।
1: अच्छा मैम जी, विषय यही है?
0: हाँ जी, विषय यही है, वन महोत्सव पे हम बात कर रहे हैं, वनों पर, पेड़ों पर।
1: तो मैं थोड़ा सा अपना माहौल वहाँ को देखा हाल सभी श्रोताओं को और आपको सुनाना चाहूंगा आकाशवाणी के माध्यम से।
0: जी,
1: कि मेरे सामने चांदनी का वृक्ष लगा है जिसमें कि छोटे छोटे फूल लगे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और दूसरा वृक्ष कह सकते हैं नींबू का लगा है,
0: अच्छा।
1: बीही का लगा है जिसमें फल भी फले हैं बीही के, और कम से कम बीही के 10-12 वृक्ष ऐसे हैं जो फले हुए हैं।
0: वाह वाह वाह। और तो ये बताइए कि वनों का क्या महत्व देखते हैं आप कमलेश जी?
1: देखिए, वनों का महत्व यदि वन है तो हम है,
0: बिल्कुल।
1: यदि ईमानदारी से बात की जाए, सचमुच में बिल्कुल हकीकत में जमीनी स्तर पर बात की जाए
0: जी,
1: वन के माध्यम से हमारा जीवन है। जंगल और जीवन ये दोनों आवश्यक है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यदि जीवन चाहिए तो जंगल जरूरी है। जंगल किसका? कंकड़ का नहीं मैम जी, पेड़ पौधों का।
0: पेड़ पौधों का बिल्कुल। अगर वन है तो ऑक्सीजन है ना, वन है तो मिट्टी का कटाव रुकता है, वन है तो प्राकृतिक जो जीव हैं, जीव जंतु, उनको भी आवास मिलता है, और हमें भी फल फूल लकड़ी औषधि सब वनों से प्राप्त होता है ना।
1: और वन के माध्यम से मैम जी देखिए बरसात है वो आकर्षित होती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए मैम जी, यही कह रहा था कि पौधे की बात हुई है, तो मैं तो मैम जी सबसे ज्यादा पौधे छोटे रूप में पसंद करता हूँ। मैंने कभी बरगद का वृक्ष लगाया था जो कि आज वो पेड़ का रूप आकार ले चुका है, और एक नीम का लगाया था, उसकी नीम की छा में आज वर्तमान में लोग खड़े होते हैं।
0: क्या बात है, आपने दोनों बड़े महत्वपूर्ण पेड़ लगाए, बरगद और नीम जी।
1: मैम जी, जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं ना, लोग यह महसूस करते हैं कि काश पेड़ होते, लेकिन जब उस छाया से जब वो दूर चले जाते हैं तो उस पेड़ को काटने की भी सोचते हैं। तो ये दो प्रकार की गतिविधियां आती मनुष्य के मानसिक रूप से।
0: जी जी, तो पेड़ों की रक्षा करनी है और पेड़ ना कटे इसके लिए प्रयास करना चाहिए हमें। तो कमलेश जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई, कितने व्रत अनुष्ठान पेड़ों से जुड़े होते हैं, कितना खेल पेड़ों से जुड़ा हुआ होता है ना, तो इस तरह की कोई याद हो अगर आपके मन में बचपन की।
1: देखिए मैम जी, बचपन में पेड़ों के साथ बहुत खेले, क्योंकि बिना पेड़ पौधे के मैं समझता हूँ जीवन अधूरा है, पहले ही कहा है।
0: जी जी,
1: तो बहुत से वृक्षों पे चढ़ते थे, फल भी तोड़ते थे, गिर भी जाते थे, पुनः फरोसी पर चढ़ते थे।
0: तो
1: उछल कून पेड़ों के माध्यम से, पौधों के माध्यम से हुई है, और वर्तमान में मेरे घर में भी छोटे छोटे पौधे लगे हैं फल फूल के, जिनको मैं स्पर्श करता हूँ, रोज ही कह सकता हूँ उनके चरण पड़ता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: फूल चढ़ाने की बात होती है तो फूल चढ़ाने से पहले मैं फूल वाले जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसके सचमुच में पेड़ पड़ता हूँ और स्वीकृति मांगता हूँ कि मैं एक दो फूल तोड़ लूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि जिन औषधियों को जब वैद्य तोड़ने जाते थे औषधियों को, तो पहले वो उस पेड़ की पूजा करते थे, उस पौधे की पूजा करते थे, अनुमति लेते थे और आभार के साथ वो औषधि वो लेते थे अपने दूसरे लोगों के इलाज के लिए। तो हमारी तो संस्कृति ही आभार की रही है। आपकी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कमलेश जी, कि आप अगर एक फूल भी तोड़ते हैं तो आभार के साथ तोड़कर उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं।
1: और मैम जी, आभार आपका भी है, बहुत ही अनुकूल वृक्ष दिशा रखा, मेरे अलावा आपने अपनी बात भी रखी, अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे, आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में ये सफर बेहद हरा भरा और खूबसूरत रहा। आपने केवल पेड़ों की चर्चा नहीं की, उनका महत्व ही नहीं बताया, बल्कि उनसे जुड़े अपने जीवन के वो अनमोल रिश्ते भी हमसे साझा किए, जिनकी छाँव में यादें महकती हैं, संस्कार पनपते हैं और भविष्य मुस्कुराता है। याद रखिए, पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीते, वो खुद धूप सहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। वो बारिश को थामते हैं, पंछियों को घर देते हैं और निस्वार्थ भाव से जीवन को समृद्ध बनाते हैं। और ये भी याद रखिए कि वन महोत्सव का ये सप्ताह तभी सार्थक होगा जब हमारे आपके हाथों से लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले सालों में किसी राहगीर को छाया दे, किसी पक्षी को आश्रय दे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा का उपहार दे। आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उससे भी बढ़कर उसे वृक्ष बनने तक अपना स्नेह और संरक्षण देंगे। चलते चलते हमारी यही कामना कि धरती यूं ही हरी भरी रहे, नदियां गुनगुनाती रहें, पंछियों का कलरव यूं ही गूंजता रहे और आने वाली पीढ़ियां भी खिलखिलाती रहें, चहकती रहें, महकती रहें। इसी कामना के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता करेंगे। इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यवहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसके लिए आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। जत्थे में बालटल और पहलगाम रूट के यात्री शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। आज भोपाल, इंदौर सहित उज्जैन और 40 से अधिक जिलों में तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमने ली है आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमीर सुदामा, शेख मुनीर और इनके गांव के लोगों ने ये हमें ख़त लिखा है। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, आप सभी ने हमें लिख भेजी है भीगी पलकें फिल्म के गाने की फरमाइश, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। तो आइए आपकी फरमाइश पर हम सुनवाते हैं भीगी पलकें फिल्म से ये गीत।

भाटरपारा, दंतीर गीसे, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जाविंद्र कुमार वर्मा, बंडा बेलई से लक्ष्मण रेकवार, विनीता रेकवार, वैशाली, वैष्णवी, अनरत, हल्ले, ऋषि रेकवार। आप सभी ने सुनना चाहा है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये नगमा।

आयुष सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं साहू नगर से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतना, रोशनी और बेबी प्रियांशी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से नगमा, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा।

शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। डोंगर गांव से राजपाल गजबीय, राधिका, बेबी अनिष्का और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फना फिल्म का नगमा, आवाज़ें सोनी निगम और सुनिधि चौहान की। आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं फना फिल्म से ये नगमा।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा।

जीने की राह फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती।
1: मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दोपहर के 12:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव # वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। # वंदे मातरम 150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको

0: दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। इसे यूं भी समझ लीजिए कि हमने आपकी नाक घुमाकर पकड़ने की कोशिश की। दोस्तों हंसना हंसाना अकेले में कभी अच्छा नहीं लगता, बस यही सोचकर हमने अपने साथ शामिल किया है राजेश मिश्रा, विनय जैन, गोपाल तिवारी, संजय गायकवाड़ और मकरंद बड़नेरकर को। ये सभी बारी बारी से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आए तो हमारे साथ हंसिएगा जरूर, और ना पसंद आए तो भी जरूर हंसिएगा। दोस्तों आज के जमाने में हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। आप हम सभी दिन रात लगे रहते हैं अलग अलग जोड़ तोड़ में, है ना, मगर हमारी जोड़ तोड़ है आपको हंसाने की। तो आइए शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम जो आपके लिए है, जिसका नाम है हंसना मना है।
1: बात एक सुनने वालों से बस इतनी कहना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है।
0: एक ऐसे शहर की कहानी लेके आया हूँ आपके सामने जहाँ बहुत सारे तांगे चलते हैं, टैक्सियां भी हैं और वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, मगर तांगे बड़े जबरदस्त हैं। तो तांगे पे सफर कर रहे थे एक महाशय जो पहली बार उस शहर में पहुंचे थे। तो सफर करते करते जहां उनको जाना था जा रहे थे, धीरे धीरे तांगा चला जा रहा था, अचानक उन्होंने दो चार गधे उस शहर में देखे। तो कुछ मजाक करने का उनका मूड आ गया, तो तांगे वाले से क्या बोलते हैं, क्यों तांगे वाले भाई, आपके शहर में गधे बहुत हैं? तो तांगे वाले ने जवाब नहले पे दहला दिया। उन्होंने सवारी से क्या बोला, हाँ साहब गधे तो खैर हैं, लेकिन कभी कभी बाहर से भी आ जाते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से क्या कहा, अजी सुनते हो, मुन्ने को पकड़े रहना वरना गुम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनके पतिदेव क्या बोलते हैं, परवाह ना करो, नो प्रॉब्लम, एक बार कोलंबस गुम हो गया था तो उसने अमेरिका की खोज कर ली थी, अपना मुन्ना गुम हो गया तो किसी देश का उद्धार करेगा वो। एक बच्चे की माँ ने अपने बच्चे से पूछा, क्यों पप्पू तुम्हें जो भाषण कला में स्कूल में पहला इनाम मिला था ये खबर सुनकर तुम्हारे पापा ने क्या कहा? लड़का बोलता है, मम्मी उन्होंने कहा कि तेरी माँ के जो गुण हैं वो धीरे धीरे तेरे अंदर आ रहे हैं।
2: एक फिल्म निर्माता ने पूरे दावे के साथ एक बात कही, वो क्या बोलता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूरे देश में भावनात्मक एकता है। तो लोगों ने बोला, भाई कैसे, ये बात आप कैसे बोलते हो? तो उन्होंने कहा, मेरी फिल्म महाराष्ट्र में पहुंची पिट गई, मध्य प्रदेश में पहुंच गई पिट गई, बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, जहां मैंने अपनी फिल्म को प्रदर्शित किया वहां पर पिट गई। इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में भावनात्मक एकता है। एक फिल्म डायरेक्टर ने एक कलाकार को बुलाया और उससे कहा, हाँ तो तुम एक काम करो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ का रोल करोगे। लड़का बोलता है, किसका रोल करेंगे सर? ओहो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ कलाकार का रोल करोगे। तो सर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो डायरेक्टर बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जैसे दिखते हो बिल्कुल ठीक है फिट है रोल में। ट्रेन चल रही थी, लोग सफर कर रहे थे।

0: मैं भी बैठा था, कुछ और भी लोग बैठे थे, कुछ माताएं बहनें बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे। जो चार पांच महिलाएं बिल्कुल आमने सामने जो बैठी थी वो आपस में बातचीत कर रही हैं। एक ने कहा, मेरी उम्र इस समय होगी करीब करीब 33। लगे बोला झूठ, उनकी उम्र 33 नहीं, उससे ज्यादा थी। तो सामने वाली बोलती, आपकी 33 है, मेरी भी करीब कोई 31 होना चाहिए, जबकि उनकी कम से कम 50 थी, लेकिन बोलती हैं 31 की। तो कोई बोलता है 25, कोई बोलता है 28, कोई बोलता है कुछ। अचानक ये सब बातें सुनते सुनते, ट्रेन तो चली जा रही थी, तो एक लड़का छोटा सा ऊपर बैठा हुआ था, करीब करीब होगी उसकी उम्र 17-18 साल की, वो अचानक गिरा। वो नीचे कहां, वो जो माताएं बहने बैठी थी उनके पास में जाके गिरा। तो एक महिला बोलती, अरे तू कहां से आया? तो लड़का बोलता, मेरा जन्म अभी अभी हुआ है। एक बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, उनके पिताजी उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, 8 2 6 56, 8 2 6 56, 8 2 6 56। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह वाह। लड़का फिर पढ़ा, 8 2 6 56, उनके पिताजी तारीफ किए जा रहे हैं। मैं अचानक उनके घर पहुंचा, और मैंने जब वो बच्चे को पढ़ते और उनके पिताजी को तारीफ करते देखा, तो मैंने जरा सा सोचा, विचार किया, फिर मैंने कहा, भाई साहब आपका बच्चा 8 2 6 56 बोल रहा है, जबकि ये गलत है, 8 2 16 होता है, आपको कम से कम अपने बच्चे को समझाना चाहिए, आप तो तारीफ किए जा रहे हो। तो उनके पिताजी बोलते हैं, बच्चे के पिताजी बोलते हैं, हमको मालूम है 8 2 16 होता है, मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूं, वो बोल रहा है 8 2 6 56, मैं मानता हूं कि वो गलत है, उसके बाद मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि कल में और आज में बड़ा फर्क है। मैंने कहा, साहब आपकी बात समझ में नहीं आई, यही बच्चा मेरा कल 8 2 96 बोल रहा था। क्यों लटोरे लाल, यहां आओ भाई, यहां आओ। लटोरे मेरे पास आया और कहता है, नमस्ते बाऊ जी, बोलिए। क्यों लटोरे, ये जो तुम कमीज पहने हो इसमें गांठ बंधी है, क्या बात, कुछ बंधा हुआ है क्या? नहीं बाऊ जी, गांठ मतलब हमको याद रखने के लिए बांधी गई है। अच्छा, किसने बांधी? मेरी धर्मपत्नी ने ये गांठ बांधी है। क्यों भाई, ऐसा क्या है, क्यों बांधी? नहीं, उन्होंने कहा था हम जो तुमको चिट्ठी दे रहे हैं तुम जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देना, भूलना नहीं, इसलिए हम तुम्हारे कमीज में गांठ बांध रहे हैं। हमने, बहुत बढ़िया स्टाइल है भाई, तो वो चिट्ठी कहाँ है? वो हमारी धर्मपत्नी हमको देना भूल गई।
1: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है, मगर जब विनय जैन आ जाते हैं तब हंसी आए बिना कहां रुकती है।
2: दुनिया में तरह तरह के इंसान हुआ करते हैं, कुछ लोग आधी बात सुनकर उसका पूरा मतलब निकाल लेते हैं और कुछ लोग आधी बात समझे बिना ही उसका मतलब निकाल लिया करते हैं। तो देखिए, आधी बात सुनकर और जो लोग बात दूसरी निकलाती है और उसका गलत अर्थ कैसे निकालते हैं या उसकी कैसी स्थितियां बन जाती हैं, उसका नमूना देखिए। एक साहब अपने दोस्त से बहुत दिन बाद मिले और पूछा कि क्या बात है भाई बद्री, बहुत उदास दिख रहे हो। कोई बात नहीं है, कुछ तो बात है यार, तो हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, बचपन से हम तुम्हें जानते हैं, जरूर तुम बात छुपा रहे हो, अब तुम तो मेरे खास दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि हमारे घर में वो जानवर पालने का शौक घर वालों को रहा आया है, तो वो भैंस पाली थी तो उसके कारण थोड़ा उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए मेरा मन खराब है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे गाय भैंस तो हमारे घर के लोग भी पाला करते थे। है, हाँ और क्या, फिर और क्या, एक बार हमारी भी भैंस की तबीयत खराब हो गई थी, अपन ने तो बस भैया वो आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दी थी। है और क्या, इतने में बात खत्म हो गई, दूसरी निकल आई, भैया की आधी बात रह गई, चले गए। दूसरे दिन मिले तो और उदास। बोले क्यों बद्री, क्या बात है? बोले यार गड़बड़ हो गया यार। गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया? बोले साहब जैसा आपके यहाँ आपकी भैंस की तबीयत नहीं खराब हुई थी तो आपने आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दिया था, हमने भी खिला दिया। हाँ फिर वो तो मर गई यार। हाँ वही तो, हमारी भी तो मर गई थी। और कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार हुआ करते हैं, पूरी बात सुनने के बाद भी उसका अर्थ किस तरह निकालते हैं, इसका नमूना देखिए। दो साहब विदेश घूमने पहुंचे, एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे उनके पास एक गाइड आ जाता है और फौरन उनसे पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मे आई हेल्प यू। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, गाइड समझता है कि शायद इनको अंग्रेजी ना आती हो तो वो उनसे हिंदी में सवाल करता है, महाशय जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं तो तीसरी बार वो चाइनी भाषा में चीनी भाषा में इनसे यही सवाल करता है। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो रशियन लैंग्वेज में गाइड उनसे यही बात पूछता है, ये फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो जैपनीज में पूछता है, दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, सबसे आखिरी में वो इनसे कौन सिर खपाए निकल जाता है। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, जब वो चला जाता है तो एक समझदार दूसरे समझदार से बोलता है, यार सत्ते अब ऐसा लगता है अपन लोगों को भी दो चार भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो दूसरा समझदार जवाब देता है, कोई मतलब नहीं है, उसको भी तो चार पांच भाषाएं आती थी, कोई मतलब निकला। एक मास्टर साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, जब भी अपनी विद्यालय में अपनी कक्षा में पढ़ाने जाते तो क्रिकेट की बातों का समावेश जरूर रहता था। अचानक उनके दिमाग में क्रिकेट भरा हुआ था और जैसे ही वो अपनी कक्षा में पहुंचे एक बच्चे को फौरन खड़ा कर दिया,
3: राजेंद्र खड़े हो जाओ, क्रिकेट का पहाड़ा सुनाओ।
2: लड़का घबरा गया, उसके बाद भी धीरे से चालू हुआ,
4: है ना क्रिकेट एकम क्रिकेट, क्रिकेट दुनिया विकेट, क्रिकेट दिया कैच, क्रिकेट चौकी मैच, क्रिकेट पंजे फील्डिंग, क्रिकेट छक्के बैटिंग, क्रिकेट सत्य सेंचुरी, क्रिकेट अट्ठे कमेंट्री, क्रिकेट नंबर डाउट, क्रिकेट धाम आउट।
2: हाँ भैया क्रिकेट धाम आउट, बहुत अच्छा पहाड़ा बनता तुमसे, बहुत हंसना है, दांत निकाल के निबंध लिखो अंग्रेजी में, हमारी टोपी पर निबंध लिखो, चलो अंग्रेजी में निबंध लिखो, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, गलती हो तो हमसे पूछ सकते हो, चलो निबंध लिखो इंग्लिश में, हमारी टोपी पर लिखना है, माफा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती, भेजा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती है।
1: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान है, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने, अगर यकीन ना हो तो सुनते हैं इन्हें।
5: एक विद्यालय में मैं गया तो बहुत बढ़िया एक बात देखी कि एक बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में डाले थे कि बच्चों से प्रार्थना के समय गुरु जी कहा करते, चलिए सावधान की स्थिति में आंखें बंद और सबसे पहले अपने अपने माता पिता और गुरु का ध्यान करेंगे, ये दो मिनट होगा, चलिए सावधान, सब बच्चे सावधान, आंखें बंद बंद, गुरु जी का ध्यान, माता पिता का ध्यान। मैं भी गया, मैंने देखा कि आंखें मैंने बंद नहीं की थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कलाकार हूं तो ऑब्जर्व करना चाह रहा था। मैंने देखा कि बच्चे कुछ जो हैं आंखें बंद की थी और कुछ बच्चे जो हैं धीरे से देख रहे थे। हमने अलग अलग बच्चों से बाद में पूछा, हमने क्यों बेटा तुम आंखें नहीं बंद करे थे?
6: नहीं, हम ये तो मौका रहता है कि गुरुजी जब बोलते हैं आंखें बंद करो तो हम अपनी सहेली को देख लेते।
5: मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने बेटा ये बताए कि आप जब आंखें बंद करते हैं तो अस्थिर सा मन क्यों होता है आपका?
6: हमारा मन इसलिए अस्थिर होता है अगर सर कि इसलिए अस्थिर होता है क्योंकि जब हम आग बंद करते हैं ना तो ऋतिक रोशन देखता है।
5: अच्छा बेटा गुड़िया तुम ये बताओ कि तुम जब आंख बंद करती हो तो तुम्हें कैसा लगता है?
6: नहीं सर, मैं जब आंख बंद करती हूँ ना तो मुझे संजू याद आता है, इतना अच्छा लगता है ना स्वीट यू।
5: तो आंखें बंद करने का ये मामला साहब, और वैसे भी जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान में पतिव्रता स्त्रियां अभी तक होती आई हैं और ये विश्व का रिकॉर्ड है। मैं एक बार विदेश यात्रा में गया तो मैंने देखा कि एक महिला कब्र के पास बैठी हुई पंखा चल रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ी सती देखी हैं, पतिव्रताएं देखी हैं, लेकिन पति के प्रति इतना प्रेम कि कब्र पर पंखा चल रही है, ये तो बहुत गजब बात हो गई। तो मैंने उससे पूछा, मैडम एक्सक्यूज मी, आप इतना चाहती थी अपने पति को कि उनकी कब्र पर पंखा चल रहे हैं? तो उसने कहा कि
6: नहीं, उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब तक हमारी कब्र सूख ना जाए दूसरी शादी ना करना।
5: एक और मामला के बड़े भैया ने छोटे भैया को आदेश किया कि
7: देखो तुम्हारा नाम छुट्टू।
5: जी भैया।
7: हम जा रहे थोड़ी शहर और तुम जो गैया है और बढ़िया गैया लगा के रखना और दूध बच्चों को दे देना और थोड़ा दूध उबाल के रख देना, समझ गया? नहीं समझ गया? बिल्कुल गैया ध्यान से लगा लेना।
5: छुट्टू ने क्या कहा, भैया हम गैया नहीं लगाएंगे।
7: क्यों क्यों नहीं लगाओगे?
5: बहुत एक नंबर।

0: के आलसी। क्यों क्यों नहीं लगाओ गैया?
1: अरे हम गैया नहीं लगाए भैया यार, गैया बहुत लात फटकार दे।
0: तुम गैया क्यों नहीं लगाओगे?
1: ये गैया लगाते हैं ना तो हमारा मुंह पे रहता है।
0: गैया लगाने मुंह पे रहता है? गैया हाथ से लगाना कि मुंह से लगाना है?
1: नहीं लगाना तो हाथ से है, लेकिन काय जब गैया लगाएंगे तो वो लात फटकारेगी तो पुचकारना नहीं पड़ेगा। आह आह आह आह।
0: दो मक्खियां शहर का दशहरा देखने आई, और दशहरा शहर जबलपुर का वैसे भी बड़ा प्रसिद्ध है। दशहरा देखने के पश्चात जब वे मक्खियां रात को शहर से लौट रही थीं, तो मक्खियों की जो आपस में चर्चा हुई, वो एक चर्चा देखिए, कल्पना है ये, और देखिए मजा लीजिए। पहली मक्खी ने दूसरी मक्खी से कहा,
2: मतलब कि ऐसे लगो तो मतलब, अरे खूब अच्छे लगो, हम तो चौपाटी तरफ निकल गए, सो हमने कहूँ चाट में बैठे, कहूँ चाइनीज में, और रसगुल्ला की ट्रे में बैठे तो ऐसे पंख ना चकवा गए हमारे, तो हमने पंखों के बिल्कुल खूब धो धाओ। और आजकल सुनो, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है शहर में, मतलब ऐसा मामला है कि गंदो पानी नहीं, वो पाउच को पानी पियो, हमने खूब मजा आए, हम तो खूब घूमे फिरे, खूब मजा आनंद लाओ। अच्छा एक चीज बताओ के तुमने दशहरा देखा? हाँ खूब देखो, राक्षस बड़ी बड़ी दुर्गा जी, और यहाँ सो पूरा मतलब बढ़िया देखा। अब जी बताओ कि घर कैसे चलो? तो कहीं काम करें कि अपन 407 में चलेंगे, यहाँ 407 में चले तो कहीं 407 में जी भीड़ रहे, लचर पचर हो गए। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे करें? फिर एक काम करें कि अपन ऑटो रिक्शा में चल। कहीं हाँ ऑटो रिक्शा वाले 5 के 25 बता रहे, खूब लूट हमारी मचाए हैं। तो फिर काश्चन एक काम करे कि अपन रिक्शा कर लें। कई रिक्शा तो कर लेते लेकिन अपना वजन देखो, रिक्शा देखो। कहीं अपन बैठे और रिक्शा लचर पचर होगा हो। तो अब तुम्हें बताओ मतलब कैसे चले? साल कल में बैठ जाए? नहीं साल कल में कैसे बैठो भाई, डंडा पे बैठो, बड़ी दिक्कत हो बैठवे में। तुम तो बताओ काश चले। कई एक काम करो, क्या करें? कुत्ता कर ले कान में बैठ के निकल चले।
3: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है।
4: मैं नगर विकास योजना समिति का सदस्य हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये बात दो लोगों के बीच में हो रही है। जिससे बोला गया वो बोलता है, कहले साहब बहुत अच्छा साहब, आप नगर विकास योजना समिति के सदस्य हैं, वो बहुत राइट टाइम साहब आप हमारे घर में आए। क्या है कि शादी के बाद हमारी योजना थी एक लड़का और एक लड़की, है ना? तो योजना अधिकारी बोलते हैं, आप मुझको गलत समझ रहे हैं साहब, आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं परिवार नियोजन से आया हूँ। मैं परिवार नियोजन का से नहीं आया हूँ, मैं योजना अधिकारी हूँ, नगर विकास योजना अधिकारी। खैर चलिए ठीक है, वैसे आपके बच्चों की संख्या पूछ लेता हूँ, क्या दो लिख लूँ? तो वो सज्जन बोलते हैं, फिर तो आप एक काम करो 7 लिखो, ये हमारी योजना का परिणाम है, हमें लड़के की प्रतीक्षा है। एक होटल में लिखा था, आइए खाइए पैसा मत दीजिए। मतलब इसका ये हुआ कि आप जो भी कुछ खाएंगे आपको पैसा नहीं देना होगा, आपका पोता पैसा देगा, यानी आपके लड़के का लड़का। अरे साहब तो मजे वाली बात हो गई, पहुंच गए 2-4 लोग, खाना खाने लगे, खूब जम के खाया, मिठाई भी आने दे, रोटी भी आने दे, पूड़ी भी आने दे, सब्जी भी आने दे, कौन पैसा देना है? देगा पोता। सब खा पी के जब बढ़िया मजा आ गया, उठने लगे तो एक बिल आ गया। बिल में लिखा था 990 रुपए 40 पैसे। तो जो खा रहे थे तो उन्होंने होटल के नौकर से पूछा, क्यों भाई आपने तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो भी कुछ खाएंगे उसका पैसा पोता देगा, है तो ये बिल काय का है? तो नौकर बोलता है, ये आपके दादा का है। एक चोर पकड़ा गया, अदालत में पहुंचा, जज साहब ने पूछा, यहां वहां की चर्चाएं हुई और कहा, तो तुमने रोटियां चुराई हैं, हैं? तुमको 500 रुपए तुम्हारे ऊपर जुर्माना किया जाता है। लेकिन वो जो रोटी चुराने वाला था बड़ा गरीब था, कहां से देता 500 रुपए? तो जज साहब बहुत ज्यादा समझदार थे, उन्होंने 500 रुपए स्वयं निकाले और उसके जुर्माने बतौर भर दिए। कितनी अच्छी बात है। लेकिन जज साहब ने एक और बहुत अच्छा काम किया, अदालत में जितने भी लोग बैठे थे सबके ऊपर 10-10 रुपए जुर्माने कर दिए। वो काय के लिए कर दिए? कि वे जितने भी लोग बैठे हैं वो ऐसे समाज के लोग हैं जहां पे लोग रोटी के लिए चोरी करते हैं।
3: बहुत देर हुई, विनय जैन कहां है? बड़े खामोश हैं, जरा देखें तो इतनी देर में उन्होंने क्या कुछ नया बना लिया।
5: एक विवाह योग्य बालक ने

0: इंटरनेट पर शादी के लिए अर्जी लगाई, जल्द ही हो गई सुनवाई। 15 मिनट में ही खुशखबरी आई, मामला फिट है, बिल्कुल हिट है। और इंटरनेट पर ही हो गई शादी, और कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर ही हो गया विधिवत डाइवोर्स। लड़का लड़की दोनों खुश, चलो इसी बहाने हो गया कंप्यूटर का कोर्स। दोस्तों कोर्स कंप्यूटर का है, लेकिन बात हंसने हंसाने की है। बहुत अच्छी बात आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले एक दिमाग के डॉक्टरों के पास अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा हुआ एक मरीज, जिससे डॉक्टर द्वारा किया गया एक जरूरी सवाल कि साहब क्या समस्या है। और जैसे ही डॉक्टर साहब का सवाल सुना इन्होंने कि क्या समस्या है, आपका जवाब समस्या, कैसी समस्या, कौन सी समस्या, कोई समस्या नहीं है, हम बादशाह अकबर हैं। अरे भला बादशाह सलामत की कोई समस्या हो सकती है? समस्या तो मैडम जुधा भाई की है। क्या समस्या है आपकी मैडम की? ये अपने आप को मिसेस भटनागर समझती है। एक महिला रेलगाड़ी के एसी के डिब्बे में बैठ के सफर कर रही थी, और उनकी गोद में उनका एक बच्चा जो काफी देर से खेल रहा था, और वो बच्चे को खिलाती हुई महिला और अपने कहीं पानी पीती हुई, कहीं बच्चे को पानी पिलाती हुई अपने सफर को लगातार जारी किए थी। अचानक वो देखती है कि सामने की बर्थ पर बैठा हुआ नवयुवक उनके बच्चे को बड़ी देर से घूर कर देख रहा है। जब महिला से रहा नहीं गया, काफी देर तक ये बात नोटिस करने के बाद उस युवक से उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि आप काफी देर से मेरे बच्चों को घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वो सामने वाले सज्जन जवाब देते हैं, मैडम मैंने जीवन में पहली बार इतना बदसूरत बच्चा देखा है। अपने बच्चे के बारे में इतनी भद्दी बात सुनकर महिला को क्रोध आ जाता है, थर थर कांपने लगती है और फौरन कंडक्टर को तलब करती है, कंडक्टर इस आदमी को फौरन मेरी सीट के सामने से उठा दिया जाए और इसको मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए, इस आदमी ने मेरी भारी तौहीन की है। कंडक्टर साहब फौरन आ जाते हैं और बोलते हैं, मैडम ये रेलवे का रिजर्वेशन है, हो सकता है सामने वाले यात्री ने आपके साथ कोई अशिष्टता की हो, मैं इसके लिए रेलवे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, और ये रिजर्वेशन के कारण इसको इसकी बर्थ से तो उठा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको आपकी मौजूदा सीट से बेहतर सीट दिलवाने का इंतजाम करता हूँ, और जबकि मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ डाइनिंग कॉर में चलिए, तो मैं आपको रेलवे की तरफ से एक फटाफट गर्मा गर्म कॉफी पिलवाता हूँ, ताकि आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और आपकी गोद में जो ये बंदर है मैं इसे एक केला ला के देता हूँ।
1: अपनी कहानी अखबार में छपे, इस चक्कर में लेखक महोदय ने अपनी कहानी तो अखबार को भेज दी, साथ में एक लेटर भी डाल दिया संपादक को, उसमें लिखा था मेहरबानी करके आप जहां चाहें उचित समझें विराम चिन्ह वगैरह लगाकर मेरी कहानी पूरी छापें। संपादक ने उनकी कहानी तो नहीं छापी, लेकिन एक लेटर जरूर लिख दिया, उसमें क्या लिखा, आप भविष्य में केवल विराम चिन्ह दिया करें, कहानी हम लिख देंगे। एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोलता है,
2: पापा पापा हमारी शादी कब होगी?
1: तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तुम्हारी शादी होगी। तो लड़का बोलता है,
2: जब हम 21 साल के हो जाएंगे तब हमारी शादी होगी पापा, लेकिन हमको हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे।
1: तो लड़के का बाप बोलता, आप हमको क्यों अपनी शादी में ले जाएंगे? तो लड़का बोलता,
2: क्यों, इसलिए हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे क्योंकि आप भी हमको अपनी शादी में नहीं ले गए थे।
0: एक ऐसे पतिदेव जो अपनी पत्नी की हर चीज में नुक्स निकाला करते थे, अचानक खाते खाते नाश्ते की प्लेट में उन्होंने एक आवाज लगाई,
3: सुनो।
4: जी अभी आई।
3: ये सूजी में शक्कर कम है?
4: ये सूजी नहीं उपमा है।
3: हाँ हाँ मालूम है, उपमा में नमक ज्यादा है।
0: सुबह नाश्ते के समय अचानक श्रीमती जी ने आमलेट और कॉफी का नाश्ता सामने रखा, तो पतिदेव की भ्रकुटी तन गई। आमलेट देख के फौरन पत्नी से बोले,
3: इधर आओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम नहीं हमको बिल्कुल आमलेट पसंद नहीं है, कॉफी के साथ आप आमलेट बना के ले आई, आज हमारा बिल्कुल आमलेट खाने का मन नहीं है, कुछ भी अपने मन से करती रहती हो, हटाओ ये आमलेट फामलेट सामने से हमारे।
0: श्रीमती जी निराश हो गई कि पतिदेव को पसंद नहीं आमलेट। दूसरे दिन नाश्ते में वो उबले हुए अंडे लेके आ गई, पतिदेव को

0: उबले अंडे ज्यादा पसंद थे। जैसे उन्होंने उबले अंडे देखे तो भ्रुकुटी फिर तन गई। तुम्हारा पता नहीं दिमाग पर आ रहता है, है? आज हमको आमलेट खाने का मन हो रहा था तो तुम अंडे उबाल के ले आई। बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ही नहीं। श्रीमती जी को बहुत दुख होता है कि पतिदेव कोई बात उनकी समझते ही नहीं है, और तीसरे दिन अचानक उसका मूड इस तरह का बन जाता है कि वो आधे अंडे उबाल के और आधे अंडों का आमलेट बना के ले आती हैं। तो जैसे ही दोनों प्लेट देखते पतिदेव फौरन भ्रकुटी तन जाती हैं। पता नहीं तुम्हें कवा का लाएगी, जो उन अंडों को उबालना था उनका आमलेट बना लाई और जो उनका आमलेट बनाना था उनको उबाल लाई। एक साहब हाथ दिखाने के बहुत शौकीन थे, जहां देखो वहीं अपना हाथ लेके बैठ जाते। एक पंडित जी को देखते ही से उन्होंने फौरन अपना हाथ दिखाया और पंडित जी को प्यार से बुलाकर, पंडित जी हाथ देख के बताइए कैसा है। पंडित जी थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में हाथ देखें और धीरे से बताया, बोले साहब आपकी तो बहुत अच्छी आयु है और आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ और सुंदर नजर आता है। पंडित जी हाथ में खुजली भी होती है। पंडित जी बोले बेटा खुजली होती बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब धन आता है, ओम लक्ष्मी कमिंग। पंडित जी इस वाले हाथ में भी होती है। बेटा यही तो गड़बड़ है, यहां से धन आता है यहां से निकल जाता है, ये तो गड़बड़ है। पंडित जी इसका कुछ उपाय? उपाय तो सब चीज का है। पंडित जी पैर में भी होती है खुजली? अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, पैर में अगर खुजली होती इसका मतलब तुम भारत भ्रमण पर जाओगे, इंडिया टूर करोगे। पंडित जी जी वाले पांव में भी होती है? भैया बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड टूर करोगे, सारे संसार भ्रमण करोगे। पंडित जी पीठ में भी होती है? बोले भैया तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें खुजली है।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मनाहे की पहली कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: अब भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है और क्षत्रिय धान को जीआई टैग मिल गया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यावहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने ईपीएफ योजना 2026 को 29 जून से प्रभावी कर दिया। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और श्री अमरनाथ जी की यात्रा कल से शुरू हो रही है। आज यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ। 147 गाड़ियों के काफिले में बालटाल रूट के 2312 लोग और पहलगाम रूट के 2510 लोग यात्रा पर हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सखी अमृत। बहनों, तेज धूप, गर्मी, घबराहट से परेशान आप हम सभी अब धीरे धीरे हो रहे मौसम के बदलाव यानी बारिश का आगाज करने को तैयार हैं। ठंडक, ताजगी और सुकून का एहसास कराती बारिश की बूंदें हमारे मन में प्रसन्नता ला रही हैं। बहनों, बारिश की बूंदों से न केवल हम और आप खुश हैं बल्कि प्रकृति ने भी अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। नीरस होते पेड़ पौधे सभी जैसे हरे भरे होने को तैयार हैं। बारिश की बूंदें उन पर पड़ते ही नई नई कोपल आ गई हैं। धीमे धीमे चलती हवा जब पेड़ पौधों को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है मानो कि पेड़ पौधे भी खुशी से झूम रहे हैं। आसमान में बादलों का छाना, ठंडी हवा का चलना और पहली बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू मन को बहुत ही शांति देती है और अपने आप ही हम आप तनाव मुक्त होते हैं और प्रसन्नता का एहसास कराती हैं बारिश की बूंदें। लेकिन बहनों, इसके साथ ही हमें बारिश के मौसम में ही स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। न केवल अपना बल्कि बच्चों और बुजुर्गों का तो और भी ध्यान रखना होता है। बच्चों को बारिश में भीगना तो पसंद होता ही है, लेकिन ज़्यादा भीगना नुकसानदायक भी हो सकता है। इस मौसम में नमी की अधिकता के कारण जीवाणु कीटाणु भी जल्दी बढ़ते हैं, तो साफ सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। हमेशा पूरी तरह से सूखे कपड़े ही पहने, गीले कपड़े या जिन कपड़ों में नमी सी लग रही हो तो उन कपड़ों को बिल्कुल भी ना पहने। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा व पका हुआ गर्म भोजन ही करें। स्वच्छ पीने के पानी का विशेष ध्यान रखें और आजकल तो बाज़ार में बहुत तरह के वाटर प्यूरिफायर मिलने लगे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्राचीन तरीके हैं जो हमारी दादी नानी करती आई हैं, यानी पानी उबाल कर पिएं या फिटकरी से साफ करके पिएं या छान कर पिएं। इसके अलावा इस मौसम में हमारी पाचन क्रिया थोड़ी धीमी भी हो जाती है, इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन करें। अपने आहार में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें और जहां तक हो बाहर के खाने से बचें। मैंने बारिश का मौसम बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आता है। अगर हम जागरूक रहें, सतर्क रहें तो बीमारियां हमारे पास भी ना आएंगी। किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए अपने शरीर को हमेशा साफ और सूखा रखें। लेकिन फिर भी बारिश की शुरुआती रिमझिम फुहारों में भीगने का मन तो करता ही है, तो आइए इस गीत के माध्यम से ही बारिश की रिमझिम फुहारों में भीगते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जब बारिश होगी तो सेहत की बात तो होगी ही, तो बारिश में भीगने से सर्दी जुकाम हो या गला खराब हो या कान में पानी चला जाए या दर्द हो, लेकिन इलाज तो सबका है। स्वास्थ्य भेंट वार्ता में आज है जानकारी नाक कान गला में होने वाले सामान्य रोग लक्षण व उपचार। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव और उनसे बातचीत की है डॉक्टर बैजनाथ गौतम ने। तो आइए सुनते हैं ये स्वास्थ्य भेंट वार्ता।
1: सेहत की बात कार्यक्रम में अखिल जी आपका स्वागत है हमारे श्रोताओं के बीच में। हम ये जानना चाहेंगे कि नाक कान गला में सामान्य रोग किस तरह से क्या क्या होते हैं।
2: ये बदलता हुआ मौसम है
1: जी,
2: तो इस बदलते हुए मौसम में आम तौर पे जुखाम बहुत होता है और इसलिए हम सबसे पहले नाक से संबंधित या सर्दी जुखाम से संबंधित बीमारियों पे चर्चा कर ले। सर्दी जुखाम का लक्षण हम सबको पता है, नाक का बहना, नाक बंद हो जाना, इसके साथ में थोड़ा बुखार हो सकता है, ये आम लक्षण है
1: जी।
2: ज्यादातर दवा या इलाज नहीं भी करें तो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं
1: जी,
2: पर यदि 2-3 दिन हो गए हैं और हमारे को ये कष्ट बने हुए हैं
1: जी,
2: ऐसी स्थिति में हमको एक विशेषज्ञ से मिल लेना चाहिए। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी,
2: कि सर्दी जुखाम के साथ यदि हम कान में दर्द महसूस कर रहे हैं तो हमको बिना देर करे एक नाक कान

0: गला के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि नाक कान और गला आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सर्दी जुखाम का इन्फेक्शन कान तक जाएगा
1: जी।
0: कान में जैसा हमारे नाक से पानी बन रहा है, इसी प्रकार से वहां पे पानी बनना शुरू होता है और वो मवाद का रूप ले लेता है। अब बाहर आने के लिए उसको जगह चाहिए
1: जी।
0: कान में सब तरफ हड्डी सपोर्टेड रहती है, कान का पर्दा एकमात्र ऐसी झिल्ली है जो नाजुक होता है और उस मवाद के प्रेशर में आके वो फट सकता है। तो वो एक ऐसा लक्षण है जिसमें हमको बिना देर करे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, एक बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि कुछ खाने पीने से सर्दी होती है
0: जी,
1: ये खा लोगे तो सर्दी हो जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: हम लोगों के दिमाग में इतना गहरा बसा हुआ है ये चीज
1: जी
0: कि हम किसी न किसी चीज को किसी न किसी चीज से लिंक करते हैं या उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। साइंटिफिकली या मेडिकली बात करें
1: जी,
0: तो जो चीजें छूने में ठंडी हैं, जिनका तापमान कम है, फ्रिज में रखा हुआ पानी, ठंडी बर्फ वाली लस्सी, ऐसा यदि जो चीज छूने में ठंडी है वो हम यदि लेते हैं
1: जी,
0: तो कुछ देर के लिए हमारे गले वाला जो इसके आसपास का हिस्सा जितना उसके संपर्क में आता है
1: जी,
0: उसका रक्त का प्रवाह कम हो जाता है ठंडे से संपर्क में आने के कारण,
1: और उसमें खराश जैसे महसूस हो।
0: एग्जैक्टली, और उतनी देर हमारी समझ लीजिए कि बॉडी में गश्त नहीं हो रही, पुलिस गश्त पे नहीं है और कीटाणु मौका पाके वहां पे अपराध कर सकते हैं
1: जी।
0: तो कुछ हद तक तो ये सच है कि जो चीजें छूने में ठंडी हैं
1: जी,
0: वो हमको थोड़ा सा सर्दी जुखाम पैदा कर सकती है कि हमको सर्दी जुखाम हो जाए
1: जी।
0: खट्टा खाना मैं नहीं समझता, मेरी जानकारी में, कि बहुत फर्क पड़ता होगा
1: जी,
0: पर खट्टी चीजें ज्यादातर एलर्जी जैसे
1: जी
0: लक्षण पैदा करती हैं
1: जी,
0: तो खट्टा डायरेक्टली मैं बहुत जिम्मेदार नहीं समझता
1: जी।
0: पर हाँ, जो चीजें छूने में ठंडी हैं
1: जी,
0: वो हमको नाक कान गले से संबंधित कष्ट दे सकती हैं और बदलते हुए मौसम में यदि हम थोड़ा सा परहेज से रह लें तो शायद बेहतर होगा
1: जी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि वो एकदम से कोई सुबह उठा और खुली हवा में थोड़ा ठंडे में और उसको लगातार छींके आ रहे हैं
0: जी,
1: तो उसको जैसे लगता है कि ठंड से उसको एलर्जी है
0: जी,
1: ये क्या है?
0: असल में एलर्जी का ही एक रूप है
1: जी।
0: जैसा मैंने कहा था, बदलते मौसम में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये मौसम रहता है जिस समय वातावरण में बहुत सारे परागकण होते हैं
1: जी,
0: एलर्जन जिसको हम बोलते हैं
1: जी।
0: ये परागकण जो होते हैं, परागकण ये ज्यादातर एलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं
1: जी।
0: इस मौसम में वातावरण में बहुत ज्यादा इनकी मात्रा पाई जाती है
1: जी।
0: तो जो व्यक्ति साल भर जैसे कोई व्यक्ति नाक की एलर्जी से पीड़ित है
1: जी,
0: साल भर यदि वो कंफर्टेबल रहा है तो इस समय उसको एलर्जी के लक्षण दोबारा हो सकते हैं
1: जी।
0: इसको हम मेडिकल भाषा में सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं
1: जी,
0: कि एलर्जी का वो प्रकार जो किसी एक खास मौसम में अपना असर दिखाता है
1: जी जी,
0: तो हमको ख्याल रखना चाहिए। दूसरा एक एलर्जी होती है सडन, यदि टेम्परेचर का चेंज होता है कि हम बहुत ठंडे कमरे में थे और हम अचानक बाहर आ जाते हैं
1: जी,
0: तो ये जो तापमान का सडन परिवर्तन है ये भी हमारे को
1: जी,
0: कुछ हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण हमको एलर्जी जैसे लक्षण ये पैदा कर सकता है
1: जी।
0: तो ये सच है कि सुबह उठ के यदि हम अचानक बिस्तर से बाहर निकल आए
1: जी,
0: तो हमको छींकों का दौर शुरू हो सकता है। इसके लिए बचाव का एक ही उपाय है कि जब हम उठ जाएं
1: जी,
0: कुछ समय जागृत अवस्था में बिस्तर पर ही बिताएं। जब हम बिस्तर से बाहर उतर रहे हैं, फर्श पे पैर रख रहे हैं, तो उस समय कोशिश करें कि नंगे पैर हम फर्श को ना छुए, ठंडे फर्श। वो कहा जाता है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे हो
1: जी,
0: सामान्य तापमान, या कुनकुना पानी पीना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा
1: जी, अगर ऐसे लक्षण है।
0: हाँ, हम ख्याल से हम सबको ख्याल रखना चाहिए इन सब चीजों का।
1: अक्सर जब ऋतुएं बदलती हैं लोग परेशान हो उठते हैं और कुछ ना कुछ एलर्जी उनको सर्दी खांसी जैसे ही, यही सबसे ज्यादा मतलब हो, तो कभी कभी तो वायरल जैसी भी चीजें हो जाती हैं
0: जी,
1: ये इसके बारे में बताइए ना।
0: बदलती ऋतुओं में जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं
1: जी,
0: तो कुछ नए कीटाणु को पनपने के लिए मौका मिलता है। तो ये वो कीटाणु हैं
1: जी
0: जो अभी तक वातावरण में नहीं थे
1: जी,
0: और हमारा शरीर जो था
1: जी,
0: उन कीटाणुओं के लिए अभ्यस्त था जो पिछले मौसम में थे। नई ऋतु, नए कीटाणु उत्पन्न होंगे और हमारा शरीर हो सकता है उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और परेशानियां पैदा करते हैं। तो बदलती ऋतुओं में डेफिनेटली थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि उस समय कुछ नए कीटाणु वातावरण में पैर जमाते रहते हैं जो हमको बीमार करते।
1: कुछ लोगों का गला बहुत जल्दी जल्दी खराब होता है,
0: ये वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का स्रोत गले में ही होता है। टॉन्सिलाइटिस एक आमतौर पे होने वाले गले का कष्ट है, ज्यादातर लोग इस टर्म से परिचित भी हैं कि हमको तो टॉन्सिल हो जाता है, टॉन्सिल हो जाता है
1: जी।
0: यदि आपका गला साल भर में 3 बार से अधिक खराब होता है।

0: इतना कि हमको दवाई खानी पड़ती है
1: जी,
0: ये एक संकेत है कि हमको विशेषज्ञ से मिलना चाहिए
1: जी,
0: और हो सकता है हमारे को टॉन्सिल्स के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े
1: जी। कुछ लोग जैसे कि कहा कि तेल गरम करके, मैं ऐसे मिथक की बात कर रहा हूं जो जुबानी चलते हैं लोगों के, और ये नुस्खे घरों के नुस्खे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, बच्चों को कान में तेल डाल दो?
0: देखिए बहुत पुरानी परंपरा है
1: जी,
0: और मेरी जानकारी उसके बारे में कितनी, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम पीढ़ियों से सदियों से करते आ रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक बेसिस रहा है
1: जी।
0: पर मुझे ऐसा लगता है कि कान में तेल डालना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है
1: जी,
0: शरीर ने खुद ही वहां पे एक वैक्स नामक एक चीज का शरीर खुद ही निर्माण करता है कान के अंदर, जो उसको वहां उतना नमी बना के रखता है या चिकनापन जितनी आवश्यकता है
1: जी।
0: हर चीज में कान में तेल डालना नहीं सही है और नहीं डालना चाहिए मुझे लगता है। क्या कान में दर्द है उसको गंभीरता से लीजिए और डॉक्टर से मिलिए, कान के दर्द को कृपया एक दिन भी नजरअंदाज ना करें।
1: तो क्या ये जो हमारे कान है, गला है, इनको साफ सफाई की क्या मतलब, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: इसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि यदि जरूरी है तो ही मिलना चाहिए कुछ लक्षण है तो, नहीं तो पुलिस से, डॉक्टर से और वकील से दूरी रहना चाहिए मेरे ख्याल से, आवश्यकता पड़ने पर इनके पास जाना चाहिए
1: जब लक्षण देखें।
0: लक्षण यदि कष्ट है तो उसको नजरअंदाज नहीं करें, जब कभी कष्ट हो रहा है मतलब वो हमारा ऑटोमेटिक मोड काम नहीं कर रहा है, उस समय शायद हमको
1: अमूमन ऐसा देखा जाता है, छोटे बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं, वो बेचारे अपना कष्ट किसी को नहीं बता पाते हैं, जब वो कभी कान मलते हैं
0: एग्जैक्टली
1: जी, तो उससे क्या,
0: यदि बच्चा कान मल रहा है या कान पकड़ के रो रहा है
1: अच्छा,
0: तो उसको 100% कान में कष्ट है
1: जी।
0: कान में दर्द होने पर ही बच्चा ऐसा करेगा, और छोटे बच्चों में 1 वर्ष से कम बच्चों की शारीरिक रचना ऐसी होती है कि उनको कान के इन्फेक्शन औरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा हो सकते हैं,
1: ज्यादा हो सकते हैं
0: कान का दर्द। हम फिर वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि कृपया कान के दर्द को गंभीरता से लें। यदि आपका बच्चा कान पकड़ के रो रहा है, कान को बार बार हाथ लगा रहा है, बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलिए।
1: बच्चे को दांत निकलते समय अधिक इन्फेक्शन वो कान में और गले में
0: हो जाता है,
1: उस समय के लिए आप क्या कहेंगे?
0: देखिए क्या होता, जब बच्चे के दांत निकलते रहते हैं तो उसको मसूड़े में एक अजीब सा सेंसेशन होता रहता है
1: जी,
0: और मसूड़ों में एक अजीब सी एहसास होने के कारण बच्चा हर चीज मुंह में डालता है और मसूड़ों से
1: जी
0: उसको चबाने की कोशिश करता है। ये एक स्वाभाविक कसरत है जो भगवान ने उसको बनाया हुआ, क्योंकि जितना हम मसूड़ों को इस्तेमाल करेंगे उतना आसानी से हमारे दांत बाहर निकलते हैं
1: जी।
0: तो ये तो उसका अच्छा वाला पार्ट हो गया, खराब वाला पार्ट ये है कि बच्चा कुछ भी मुंह में डालता है तो इन्फेक्शन जरूर शरीर के अंदर पहुंचेगा। कभी कभी ये उल्टी दस्त की वजह बन जाता है। सर्दी जुखाम को अपन इससे डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, पर हाँ हमको कोशिश करना चाहिए कि यदि छोटा बच्चा घर में है तो साफ सफाई इतनी होनी चाहिए, गंदी चीजें बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए आसानी से, क्योंकि उस समय बच्चा जो भी उसके हाथ में आएगा उसको मसूड़ों में दबाएगा ही दबाएगा।
1: क्या योग से, प्राणायाम वगैरह से भी ये नाक कान गले में?
0: 100% योग हमारे शरीर की हर बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है
1: जी,
0: जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस
1: जी।
0: योग जो भी व्यक्ति उचित तरीके से कर रहा है
1: जी,
0: उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ज्यादा अच्छी होगी उस व्यक्ति की अपेक्षा जो योग नहीं करता है
1: जी।
0: तो योग भगाए रोग एक आम तौर पे बोली जाने वाली चीज है और ये 100% सही।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के बीच में आप आए और आपने महत्वपूर्ण 3 अंगों के बारे में, नाक कान और गला के बारे में सामान्य रोगों की जानकारी दी, निस्संदेह इससे लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी सेहत की बात में बहने सुन रही थी नाक कान गला में होने वाले सामान्य रोग लक्षण व उपचार, इस विषय पर डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव से डॉक्टर बैजनाथ गौतम की बातचीत। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद बारिश के साथ हल्की हल्की ठंडक के साथ अब सभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे भी तैयार हैं स्कूल जाने को, तो हम आप उनको यही बोल रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ खेल मस्ती, अब रोज जाओ स्कूल और मन लगाकर करो पढ़ाई। लेकिन अब स्कूलों में केवल कॉपी किताबों के साथ पढ़ाई ही नहीं होती, बल्कि बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है और इसके लिए स्कूलों में मैदान में खेलने के साधन भी होते हैं, साथ ही खेल प्रशिक्षण के लिए टीचर भी होते हैं जो बच्चों की क्षमता अनुसार खेल का प्रशिक्षण देते हैं। और आज बहुत से लोग अलग अलग खेलों में अपना कैरियर बना रहे हैं। खेल से संबंधित कई सारे क्षेत्र

हो सकते हैं जिसमें आगे चलकर कैरियर बनाया जा सकता है। आजकल तो हर समय प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चलते रहते हैं और उसकी खबर आप हम तक आसानी से पहुंच जाती है। और ये खबर पहुँच

सखियों, आज हम मना रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। इसकी शुरुआत 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और खेल पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना। खेल पत्रकारिता खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है, बल्कि खेल और खिलाड़ियों के बीच एक सेतु का भी काम करती है। खेल पत्रकारिता का महत्व केवल खेलों की रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आज का दिन यानी 2 जुलाई दुनिया भर के खेल पत्रकारों के अथक प्रयासों और उनके काम के प्रति समर्पण को सम्मान देने के लिए समर्पित है। 2 जुलाई खेल पत्रकार दिवस के लिए इसलिए चुनी गई क्योंकि 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर के खेल पत्रकारों को एक मंच पर लाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और खेल पत्रकारिता में गुणवत्ता, पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा देना है। खेल पत्रकार न केवल खेलों की जानकारी, विश्लेषण और कहानियां प्रस्तुत करते हैं, बल्कि खेलों के बारे में लोगों को जागरूक भी करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। खेल से खेल भावना विकसित होती है, आपस में मित्रता बढ़ती है, एकता की भावना आती है। और आइए बहनों, चलते चलते सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: श्रोताओं एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव पुण्य कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव पुण्य कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन समय एक बार पुनः सुन लीजिए, 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारे फोन नंबर 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: अरे वाह श्रोताओं, 90 साल हो गए, गीत गजल कहानियां और ढेर सारी यादें, हर जनरेशन की धड़कन।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे नीलम कुलकर्णी के गाए लोकगीत।

नीलम कुलकर्णी की गाई इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। ये कार्यक्रम जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे मानस रॉय चौधरी के गाए भजन और गीत।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत यादों की बारात। पहला गीत इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, मजरूर सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

लव इन टोक्यो कार्यक्रम का अंतिम गीत इस फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी का गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने कैबिनेट सहयोगियों का परिचय कराया। दोनों नेता 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ताकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करके अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया गया। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। कार्यक्रमों में नागरिकों को 125 दिवस रोजगार गारंटी, पारदर्शी भुगतान प्रणाली और विकेंद्रीकृत ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की जानकारी दी जा रही है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साह का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉ साह भोपाल में आयोजित 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। अब घर खरीदने, निर्माण, मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई और विवाह जैसे खर्चों के लिए भी धन निकाला जा सकेगा। ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। पौधरोपण आज से शुरू हो गया है और बीएसएफ परिसर में सर्वाधिक पौधे लगाए जाएंगे। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह अभियान केवल पौधरोपण नहीं बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की सभी 78,000 से अधिक शालाओं ने इस रेटिंग में सहभागिता की थी। सभी चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। विश्व चैंपियन डी गुकेश एक हार और एक जीत के बाद छठे स्थान पर रहे। वहीं फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा 5 अंकों के साथ अकेले शीर्ष पर बने हुए हैं। टूर्नामेंट में अब सुपर रैपिड के 6 राउंड और खेले जाने बाकी हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर में कल तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार महापात्र ने सुश्रुत कॉमन एंडो ट्रेनर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह सुविधा लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी और जटिल सर्जरी का सुरक्षित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। निवाड़ी में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत यूएन वुमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने परियोजना से जुड़ी बालिकाओं से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। डिंडौरी में डेंगू निरोधक माह के अवसर पर डेंगू से बचाव और जन जागरूकता के लिए डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और गुना के क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में नए छात्र छात्राओं के स्वागत और मार्गदर्शन के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती

0: नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल

मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बारताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल

0: सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHAIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर,

0: बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजिए नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। कबाईसालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव ने इन सब ने सुनना चाहा है सीता और गीता फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव फरमन ने।

0: साथ साथ,
1: अरे रे,
0: घटा के संग संग,
1: संभालना,
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल।

आशा भोसले की आवाज़ में सुनिए समाधि फिल्म का ये नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है आर.डी. वर्मन ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं समाधि फिल्म का ये गीत।

जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बेली जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरथ रेखवार, लल्लू ऋषि रेखवार, कवर कॉलोनी पड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। आप सबने सुनना चाहा है मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा चित्तर और साथियों की आवाज़ में शोर फिल्म का ये गीत, बोल राजकपि इंद्रजीत सिंह के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत है और राहुल देव वर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राजे मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार ने। तो सुनिए आपकी फरमाइश का ये नगमा।

विक्टोरिया नंबर 203। लता मंगेशकर की आवाज में इस फिल्म का गाना सुनिए, वर्मा मलिक का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा ने। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

पिया का खैर कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए इस फिल्म से, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतला राजेश, घंटागढ़ छोक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VBG रामजी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ हुआ। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम एफ 88.3 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 8:15। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:00। 6:30 आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर ऋतु पांडे से ली गई भेंट वार्ता, विषय है वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। आपकी फरमाइश

कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे 10 बजे और 9:30 बजे फिल्म संगीत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम रात 10:30 बजे से आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। ये थे शाम के समय में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत सुगम संगीत। लोक संगीत में आप सुनेंगी नीलम कुलकर्णी के गाए लोकगीत और सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे मानस राय चौधरी के गाए गीत और भजन। पहले सुनते हैं लोक संगीत में नीलम कुलकर्णी को।

0: मैदान में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, इतिहास रचते हैं, लेकिन उनकी हर जीत, हर संघर्ष और हर कहानी को दुनिया तक पहुंचाने वाला कौन होता है?
1: जी हाँ, वो होते हैं खेल पत्रकार, जो खेल जगत की हर धड़कन को शब्दों और आवाज के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं।
0: अंकिता, खेल पत्रकारिता का महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है?
1: बिल्कुल मेघा, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस उन पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर हम तक पहुंचाते हैं। वे केवल मैच का परिणाम नहीं बताते, बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, मेहनत और लगन को बताते हैं।
0: अंकिता, खेलों के प्रति लोगों का उत्साह तो हमेशा से रहा है, लेकिन खेल पत्रकारिता ने इस उत्साह को और बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।
1: बिल्कुल मेघा, खेल पत्रकार ही वे लोग हैं जो मैदान में होने वाली हर महत्वपूर्ण घटना को दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। उनकी वजह से हम खिलाड़ियों की उपलब्धियों, संघर्षों और रिकॉर्ड्स के बारे में जान पाते हैं।
0: तो आइए, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम उन सभी खेल पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हैं जो खेलों की हर धड़कन को हम तक पहुंचाते हैं और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाते हैं।
1: दोस्तों, इन्हीं प्रेरणादायक भावनाओं के साथ आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, जुग जुग जियो फिल्म से कविता सेठ और कनिष्क सेठ की आवाज में।

0: दोस्तों आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है व्यावसायिक शिक्षा आज की आवश्यकता। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शुक्ल, इनसे बातचीत की है रविंद्र दुबे ने।
1: श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रानी दुर्गावती, प्रबंधन संकाय के पूर्व अधिष्ठाता और अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य एवं निजी महाविद्यालय के MBA विभाग के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार शुक्ल जी को। शुक्ल जी से आज हम बात करेंगे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम आज की आवश्यकता। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्या है।
2: व्यावसायिक पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जो किसी विशेष व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या सेवा में कार्य करने के लिए आवश्यक तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान या कौशल प्रदान करने का एक माध्यम। इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे पाठ्यक्रम आ सकते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम IT बोलते हैं, कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर, कृषि से संबंधित उसके व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य से संबंधित, पैरामेडिकल सेवाएं, होटल से संबंधित पाठ्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन से संबंधित, फैशन डिजाइनिंग।

0: जी
1: और भी बहुत सारे पाठ्यक्रम है जो इसके अंतर्गत आते हैं।
0: व्यावसायिक शिक्षा के मायने क्या है डॉक्टर साहब, ये भी बताएं हमारे सुनने वालों को आप।
1: व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य वह शिक्षा है जो व्यक्ति को रोजगार के साथ साथ
0: जी
1: स्वरोजगार का माध्यम बनाती है।
0: अच्छा जी, डॉक्टर साहब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा क्यों आवश्यक है?
1: वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, प्रौद्योगिकी का युग है, औद्योगिकरण का युग है, और इस वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के युग में केवल पारंपरिक एवं सैद्धांतिक शिक्षा आज के रोजगार बाजार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है।
0: अच्छा,
1: इस स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को व्यावहारिक कौशल, तकनीकी दक्षता एवं रोजगार उन्मुख ज्ञान प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देती है।
0: इसके मूल उद्देश्य क्या हैं, ये भी हमारे युवाओं को बताएं आप।
1: व्यावसायिक पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय, उद्योग या कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान, तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें तथा व्यक्ति अपनी निजी आजीविका कमाने योग्य बन सके।
0: डॉक्टर साहब ये भी बताएं हमारे सुनने वालों को कि व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सामान्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए व्यापक ज्ञान प्रदान करना है। इसमें भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास और इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। यह शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य किसी विशेष व्यवसाय, उद्योग या कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक व्यवहारिक और तकनीकी कौशल विकसित करना है, ताकि व्यक्ति रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सके। यह शिक्षा कौशल और रोजगार केंद्रित होती है।
0: ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का क्या स्थान रहा है?
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़ना और विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करना है।
0: जी,
1: इस नीति में इस वर्ष तक लगभग 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
0: जी,
1: इस नीति में व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, ताकि विद्यार्थी केवल डिग्रीधारी ना बने बल्कि कौशल युक्त, आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए तैयार नागरिक बन सकें।
0: जी, आज के डिजिटल युग में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व क्यों बढ़ा है, ये भी बताएं।
1: डिजिटल युग में नई तकनीक जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल डेटा मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल कर्मियों की आवश्यकता बढ़ी है।
0: अच्छा,
1: इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। कंपनियों को सैद्धांतिक ज्ञान की ही नहीं बल्कि कार्यकुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा कम समय में रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करती है और बदलते परिवेश के अनुरूप हमें तैयार करती है।
0: व्यावसायिक शिक्षा से उद्यमिता को डॉक्टर साहब कैसे बढ़ावा मिलता है?
1: यह शिक्षा विद्यार्थियों को किसी विशेष क्षेत्र में तकनीकी और व्यवहारिक दक्षता प्रदान करती है, जिससे वे स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। साथ ही साथ नौकरी खोजने की बजाय नौकरी के सृजन करने के लिए भी यह शिक्षा प्रेरित करती है।
0: अच्छा,
1: इस शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी नई तकनीकों और विचारों का उपयोग करके नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर सकते हैं। इस शिक्षा से व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं का व्यवसाय भी प्रारंभ करता है, और यह शिक्षा व्यक्तियों में आवश्यक कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास प्रदान करके एक सफल उद्यमी बनने व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बना।
0: विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका डॉक्टर साहब क्या हो सकती है?
1: ये प्रश्न भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उचित है।
0: जी,
1: यह शिक्षा केवल रोजगार स्वरोजगार का माध्यम नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास का आधार भी है।
0: अच्छा,
1: यह विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान, कौशल एवं कार्य अनुभव प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनाती है। विद्यार्थी सामाजिक रूप से जिम्मेदार व जागरूक होता है। जब विद्यार्थी अपने कौशल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करता है तो उसमें आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। व्यवहारिक ज्ञान से

0: वह अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल कर पाता है। इसके अंतर्गत वह प्रोजेक्ट कार्य करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है और ग्रुप डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज़ के जरिए वो लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजरियल स्किल विकसित करता है। इस प्रकार के गुणों के विकास से विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास होता है।
1: अच्छा जी, आपने साइबर की बात की, तो ये जो साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम करने में विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होता है ये भी बताएं
0: जी। आजकल ये साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम बहुत ही पॉपुलर पाठ्यक्रम है। आज के डिजिटल युग में
1: जी
0: साइबर सुरक्षा का महत्व निरंतर बढ़ रहा है।
1: अच्छा,
0: इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, डिजिटल सेवाओं के बढ़ते प्रयोग से
1: अच्छा
0: साइबर अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
1: जी,
0: इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों में डिजिटल सुरक्षा, तकनीकी दक्षता, रोजगार के अवसर, उद्यमिता की संभावनाएं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान की क्षमता प्रदान करना है।
1: अच्छा, व्यावसायिक शिक्षा से विद्यार्थियों को डॉक्टर साहब क्या फायदे हो सकते हैं ये भी बताएं आप।
0: व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख ज्ञान व कौशल प्रदान करती है। इससे वह जीवन और अपने करियर की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।
1: जी,
0: इसमें रोजगार के बेहतर अवसर, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह केवल नौकरी पाने के योग्य का योग नहीं है,
1: हाँ,
0: बल्कि जीवन में सफल, सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करती है।
1: इंटर्नशिप का इसमें क्या महत्व हो सकता है?
0: इंटर्नशिप का यदि मैं देखूं तो इंटर्नशिप के माध्यम से विद्यार्थी एक सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करता है।
1: हाँ हाँ।
0: वो उस स्थान पर जाके अपने सैद्धांतिक ज्ञान को वहाँ पे व्यावहारिक रूप में प्रयोग करता है, जिसमें उसमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
1: हाँ हाँ।
0: और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है।
1: अच्छा जी, डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा कैसे लाभप्रद है?
0: ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। यह शिक्षा ग्रामीण विद्यार्थियों को रोजगार परक कौशल प्रदान करके उनको निरंतर आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, हस्तशिल्प, कंप्यूटर, अन्य तकनीकी क्षेत्र संबंधित ज्ञान व कौशल प्रदान करके इनको रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे हमारा ग्रामीण विकास तीव्र गति से आगे होता है।
1: जी, अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर, इससे विद्यार्थियों को कैसे लाभ प्राप्त होता है ये भी बताएं आप।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रही है।
1: जी,
0: इसमें विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति, कौशल विकास, शोध, नवाचार और करियर निर्माण का एक सशक्त माध्यम है।
1: जी,
0: इसका सही और नैतिक प्रयोग विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सक्षम बनाता है।
1: चर्चा के अंत में और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे युवाओं से?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के प्रतियोगी और तकनीकी युग में व्यावसायिक पाठ्यक्रम केवल विकल्प नहीं है
1: जी,
0: बल्कि आवश्यकता बन चुके हैं
1: जी।
0: मैं युवाओं को कौशल, आत्मविश्वास, रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं ये पाठ्यक्रम। यदि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। युवा शक्ति ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है और व्यावसायिक शिक्षा उस शक्ति को सही दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है।
1: व्यावसायिक पाठ्यक्रम आज की आवश्यकता, इस विषय पर डॉक्टर साहब आपने हमारे सुनने वालों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था व्यावसायिक शिक्षा आज की आवश्यकता। विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र कुमार शुक्ल, इनसे बातचीत की थी रविंद्र दुबे ने। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, यारिया 2 फिल्म से विशाल मिश्रा और नीति मोहन की आवाज में।

0: अंकिता, लाइफ कितनी आसान हो जाती है ना, जब हमें समझने, हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे फैमिली, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मेघा, हमारे सपने पूरा करने में हमारे अपनों का ही तो हाथ होता है। और इतना ही नहीं, अगर लक्ष्य क्लियर और दूसरों की भलाई से संबंधित हो तो इसे पूरा करने में सहायता हमारे देश की सरकार भी करती है।
0: हाँ, आज के युवा को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्री पोस्ट मैट्रिक, नई मंजिल, नया सवेरा और जन विकास जैसे कार्यक्रमों की मदद से लोगों के जीवन को और भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: और दोस्तों, सरकार के ऐसे कई प्रयास अल्पसंख्यक वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर भी किए जा रहे हैं,
0: जिससे युवा वर्ग में समानता की भावना जागृत करने में भी मदद मिल रही है। आज हर वर्ग, हर क्षेत्र का व्यक्ति एक समान है और हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिसमें सभी को अपने जीवन के लिए समान अधिकार प्राप्त है।
1: दोस्तों। उम्मीद है आप सभी इन योजनाओं से, सरकार के कार्यक्रमों से जुड़ने का और दूसरों को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे।
0: इन्हीं बातों के साथ आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, फिल्म फैंटम से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों, और अब वक्त है उन सवालों के जवाब जानने का जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछे थे। तो हमारा पहला प्रश्न था, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही जवाब है 9 मई 2015 को।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था, महाराष्ट्र की पहली इनोवेशन सिटी किस शहर के पास विकसित करने का प्रस्ताव है? इसका उत्तर है मुंबई सिटी। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अंकिता।
0: और मैं हूँ मेघा।
1: फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नए विषय के साथ। तब तक के लिए
2: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

अभी यह वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए वारिस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने इस गीत को गाया है। वर्मा मलिक के लिखे गीत को संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने।

और लीजिए आप सुनिए चांदनी फिल्म का गीत आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरी।

फहीम अब्दुल्ला ने इस गीत को गाया है, इरशाद कामिल ने गीत लिखा है और गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

कार्यक्रम के आखिर में दोस्ताना फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले ने गीत गाया है, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। गठिया रोग और अर्थराइटिस रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन और समय एक बार पुनः सुन लीजिए। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच फोन नंबर्स हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों

में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में जनजाति बाहुल्य 25,892 घर अब तक विद्युतीकृत किए जा चुके हैं और चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: संबंध। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
3: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
3: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
3: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
3: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
3: इसे तराशा जाता है।
2: और
3: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
3: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन

0: प्रश्न यह है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं,
1: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुंचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता यह है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है। तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र

0: वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
8: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राज

0: परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
2: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
2: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दे पे बैठ कर
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज जय हो,
8: महाराज जय हो,
9: महाराज जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
11: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
10: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है।

0: जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
0: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम

0: खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
1: सूर्य ग्रह है या तारा?
0: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
0: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
2: अच्छा सर।
1: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
1: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे? आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो।

0: देश का नाम हमेशा रोशन करो।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
2: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: उमंग, अभी आपने NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए तुमको मेरी कसम फिल्म का गीत। नीति मोहन और पपून की आवाजें हैं, श्वेता बोथरा की शब्द रचना और प्रतीक वालिया का संगीत।

चितचोर, इस फिल्म का गीत सुनते हैं येसुदास की आवाज़ में। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

नादानिया फिल्म का गीत सुनिए सचेत टंडन, असीस कौर और सचिन जिगर की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है, अनजान के लिखे गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने और फिल्म है याराना।

धूमधाम फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सिद्धांत कौशल ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं क्लिंटो सरेजो और बैंका गोम्स, और इस गीत को गाया है विशाल ददलानी ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं इश्क विश्क रिबाउंड फिल्म का गीत। दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली ने इस गीत को गाया है। संगीतकार हैं रोचक कोहली और गीत लिखा है गुरप्रीत सैनी।

0: भोपाल पर।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल

0: जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है कार्यक्रम विवरण के लिए। तो आइए पहले आज के शेष कार्यक्रम हम आपको बता दें। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में, आपकी फरमाइश का समय रहेगा 10 बजे। आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर ऋतु पांडे से की गई भेंटवार्ता, वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद सलाह। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल में का आंखों देखा हाल आज रात्रि 10:30 पर दिल्ली से रिले किया जाएगा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

और अब जानकारी लीजिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। गांधी चर्चा का समय है 9:15।

जिले की चिट्ठी सुनिए 10 बजे। 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें हम सुनवाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर आप सुनेंगे पद्मावती शालिग्राम का गायन, राग होगा देसी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम।

11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है 12 बजे। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनिए हंसना मना है इस धारावाहिक की दूसरी कड़ी। हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में कल सुनेंगे दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां छतरपुर केंद्र की होंगी। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6 बजे। 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, 9:30 पर खेल जगत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। इसमें सुनेंगे

अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम के खिलाड़ी अंश बहुत्रा से बातचीत। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। कल शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता। आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीरामजी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ। अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता हुई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता किया। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैव गैस पहल से देश में 1000 जैव गैस और आर्थिक जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूर और उड़द जैसी कम पानी की फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अलनीनो के प्रभाव को देखते हुए एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 वर्षों की कार्य योजना के तहत जलाभिषेक 2.0 के माध्यम से तालाबों और बावड़ियों के पुनर्जीवन के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा समग्र विभिन्न मिशन की भी समीक्षा की। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण और जल संवर्धन करना है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत जीरामजी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों की तुलना में अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी धनराशि मजदूरों को काम और गांव के विकास के लिए दी जाएगी।
0: वहीं प्रदेश में भी विकसित भारत जीरामजी योजना आज से मनरेगा का स्थान ले चुकी है। सभी जिलों में आज जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा का

0: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर साहा 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होने के लिए भोपाल आए। ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2548 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1767 पद सहायिकाओं के लिए हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन MP ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। दोनों पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है। जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह सम्मान आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीकों और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों से डिजिटल नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह के तहत लगाई गई है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों और महिला स्वसहायता समूहों को सिलाई मशीन सहित टूल किट भी वितरित किए। ये प्रदर्शनी 4 जुलाई तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने आज पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे करीब 70 फीट नीचे उतरकर टनल के भीतर पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरी होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब तक 25,892 जनजातीय घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सर्वाधिक 13,058 घरों को विद्युतीकृत किया है। ये योजना आदिवासी बहुल गांवों में परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 40% व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस के लिए 1 जुलाई से EHRMS का ई लीव मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, जिसपे पुलिसकर्मी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर प्रदेश की करीब 120 पुलिस इकाइयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। भारतीय रेलवे ने जून 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस दौरान 63,81,00,000 यात्रियों ने रेल यात्रा की, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज भोपाल समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। खरगोन के कसरावद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें और खेत जलमग्न हो गए। शाजापुर के अकोदिया में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। वहीं मानसून ने 24 जून को प्रदेश में एंट्री की थी और 9 दिनों में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इंदौर में इस बारिश में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। BSF परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से माँ के सम्मान से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया। रायसेन जिले के 1800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला 2 का समापन उत्सव का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैंसदही की छात्रा पद्मा मर्सकोले ने

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश पाकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। देवास जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिनों में 1,84,000 से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों के लिए टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती को लेकर एक विशेष किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भिंड में फसल बीमा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम के तहत कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता, आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीराम जी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ, अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनी का पूजा बहनी की राम राम। सुनैया भैया बहनी, असार लग गया आ पानी बरसे लगे। आज तो नहीं कहा पानी बरसा माले, दोपहर से बरसे लाख 12-1 बजे से, तब है 4-5 बजे भर नहीं कहा पानी बरसा, मार गड़ाई गड़बा सब भरे गए रहते। पर देखे जब पानी बरसा था तब बहुत नीक लगा था, बड़ी ठंड ठंड हवा के फुहारा जब लागा थे मैं पानी की झिरकी के साथ, था इतना मतलब सुकून सुख मिलत है के मने का कहा है। और जैसे बरस के निकल जाते तो इसे ऐसा भबके लागत है कि फिर लाते घर से बहरे में नहीं निकल जाए, घर के भीतरे बिल्कुल रहाई नहीं पड़ती है मारे गर्मी के। सुनैया भैया बहनी, इतनी साए थे पेड़ बिरछा लगावे के निकहा मौसम है, काहे कि इतनी समय पानी बरसा थे अषाढ़ के टाइम में, और ऐसे में जब मने पेड़ पौधा लगावा थे तो वो जल्दी तैयार हो जाते, मैं सूखे उखे के हुआ नहीं रहा है कहा ना, मने ये जेठ होठ में लगावा थे या ऋतु में लगावा थे तो लगा थे कि जो रोज पानी ना डाल तो सूखा जाए, पर यह समय कहा रहा था कि पानी बरसते रहा था। आओ कुछ हो भैया बहनी, दयु के पानी बहुत असर करा थे पेड़ पौधन का है, तो जैसन अब हम बनचे अषाढ़ के पहले देखवा पानी के जगह जगह कमी देखे का मिली। एकर कारण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा तर ही नहीं गए, कटाई हो गए, और यहीं से पानी के संकट दिन दिन गहराते जाए थे। ता हम पंचे बहनों चेती जागी और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम पंचे पेड़ बिरबा लगाई अपने घर के आसपास लगाई, जो भूई जगह परी हो, जो भूई जगह बंजर ऊसर हो, जहाँ पंचे खेती किसानी नहीं करी वहूँ लगाई, और खेत खरिहाने के मेड़ ओढ़ में लगा दी। माने ऐसा है कि हर साल हम पंचे 10-20 बीरवा तक लगाऊबे करी हर किस्म के हैं, जोने देखी पर्यावरण हरा भरा रहा है और समय साहित में खेती पानी बरसत रहा है। और देखी इतनी जूना खेती किसानी के काम बहुत तरपरियान है, खेते में है खादी डायरेक्ट है, कुछ जन के तो डरे ही गई है पानी बरस दी तो मने खेतों एक आध जोता हानि तो हो ही गया है, और अभिनो मने ही खेत जोती और हर बियाह के मने धान उनके बेहन डाल दे, तिली और हर छीट दे, जो भुट्टा मक्का मने ही बोवे हुआ सब छीट दे, मिर्चा उर्चा के बेहन डाल दे जो उन्हें लगावे का हो जाए, सागो सब्जी मने ही लगाते है रे रुआता रोई कोहड़ा लौकी।

सीजन वाली सब्जी तो मैंने यह लगा ली। माने अषाढ़ बहुत ज्यादा काम आए रहा है। आओ देखी ये सब करबो जरूरी है। मैंने जल्दी आए के समय वाहे काम कर ले जोने कुछ पछिले न पावे सब काम।

पाकिस्तान के युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 का भरा है। और यह एक ठे ऐतिहासिक द्विपक्षीय शांति समझौता रहा है। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और भारत के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला के वॉन्स कोर्ट माने राजभवन में हस्ताक्षरित किया गया रहा है। यह समझौता के कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं, जैसन के पहल बिंदु रहा द्विपक्षीय वार्ता, माने दोनों देश अपने विवादन विशेष रूप से कश्मीर मुद्दा का आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझावे में सहमत रहे। एमा कोनो तीसर पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का स्पष्ट रूप से नकार दिन का, माने यह केवल दुई देशन के बीच के समझौता रहे, में तीसर लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते रहे। दूसरा रहा नियंत्रण रेखा, जिन्हें का LOC कहते। युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम रेखा का दोनों देश नियंत्रण रेखा के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दिन गए। तीसरा रहा युद्ध बंदियन के वापसी, युद्ध में भारत द्वारा बंदी बनाए गए जो अधिक से अधिक पाकिस्तानी सैनिक और नागरिक रहे तो नहीं यहाँ से रिहा किए गए। चौथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दोनों पक्षन में एक दूसरे के संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान करें और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें के संकल्प लीन कर रहा है। सुनइए भैया बहनी, कईक महीना से तक चले वाली यह राजनीतिक स्तर के बातचीत के बाद जून 1972 के अंत में शिमला में भारत पाकिस्तान शिखर में बैठक भय। इंदिरा गांधी और भुट्टो अपने उच्च स्तरीय मंत्रियन और अधिकारियों के साथ उन सब विषयों में चर्चा की जो उनकी 1971 के युद्ध से उत्पन्न हुए रहे, और साथ ही उपंचे दोनों देश के और दूसर प्रश्न में बातचीत किन रहा। लंबी बातचीत के बाद भुट्टो यह बात के खातिर सहमत भी कि भारत पाकिस्तान संबंधन का केवल द्विपक्षीय ये बातचीत से तय की जाए। शिमला समझौता के अंत में एक समझौता वह इंदिरा गांधी और भुट्टो हस्ताक्षर की और 2 जुलाई का दोनों पक्षन में समझौता हो गया। पाए हम पंचे तैयार देखी सबे को जानी थे कि जो आपन देश पड़ोसी देश है पाकिस्तान वह कितना परिबाती में अड्डी है। ओके वादा देखी कई एक ठे हमला भी और कई एक बेर के भारत में घुसपैठ भय। ओके पाकिस्तान के कोनो बात में दम दिला सकता है नहीं। सुनइए भैया बहनी, देखी कोनो जब बातचीत होती है आपस में नहीं सामंजस्य रखते थे कि हम पंचे चाहे देखी घर परिवार हो चाहे समाज हो चाहे देश दुनिया हो शांति सब जगह जरूरी है। और देखी जब सब तर शांति रही तब देश दुनिया के मनई सुखी रही, ऐसे भाईचारा और एकता हर जगह है मायने रखत है। और आपन देश तो ये मामले में बहुत ही निपुण है, तभी नहीं हन विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। और एकता और अखंडता अभिनव अपनी यहाँ कायम है, सब एक दूसरे के सम्मान करा थे, भाईचारा से मिलजुल के रहा थे और एक दूसरे के रंग मरंग के हंसी खुशी तीज त्योहार में नहीं मनावत है, एक दूसरे के सुख दुख में ठाड़ होत है। आओ देखी जब कोनो मदद की जरूरत पड़ती तो एक देश दूसरे देश की मदद करत है, कोनो मेर की समस्या आ जाती परेशानी आ जाती ता चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे कोनो रूप से हो सैन्य रूप से हो, तो एक दूसरे के बीच में जब आपस में सामंजस्य प्रेम भाईचारा रहत है तो मनई मददों करत है। लेकिन जब संबंध अच्छे नहीं रहते फिर मदद की आशा मनई नहीं करे। ऐसे हमारे कहा का मतलब ये आया कि चाहे घर परिवार में हो चाहे देश दुनिया में हो हमको बच्चे का हर जगह शांति जरूर स्थापित करे चाहिए, एक दूसरे की मदद करे चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में ठाड़ हो चाहिए और प्रेम भाव से एक दूसरे से मिल पुट के हंसी खुशी मनाई कर रह चाहिए।

0: सुनैया भैया बहनी, अबे सब जने विकास गीत सुनत रहें, जौने का गावत रही है कोमल मिश्रा।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा

जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 100

0: 50वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: सुनिए भैया बहनी, आज है गुरुवार और अपना पंचे तजनते हैं कि आज के दिन हम पंचे अपना पचन के खातिर लेके आए थे कविता या की कहानी जे मनोरंजक होए के साथ साथ ज्ञानवर्धक होती हैं। और जब कविता कहानी अपने बोली भाखा के होए तो और निक लगती हैं। तो आई सुना जाए यह कविता पाठ जो उन्हें सुनाए रहे हैं अंजनी कुमार।
2: गीत पढ़े चाहे थे किसन माँ की ओरी चुई गए किसन माँ उतान होई ओरी चुई गए किसन माँ उतान होई बीज बहड़ी माँ खूब सोचान होई ओरी चुई गए किसन माँ

उतान होई। व्यवस्था देखी के दौड़ी कुठली उतावे और गावत है हो छूछ चुकड़ी टनाटन बजावत है हो बोई भुट्टी

दरी पहाड़ चढ़ गए पहले पानिन से सब तर गुहार चढ़ गए खेत बो भई का

मन होई। और सातम पुराण कैसन रात है कि कहाँ बूढ़ा ना मूढ़ा चढ़ैया सऊ कहाँ सूखा न पुन के परै।

अदरा कि अम्बा के डार बैठी गावती कोयलिया, अम्बा के डार बैठी गावती कोयलिया, मीठी प्यारी रगियाई बोले बोलिया, पहाड़ी ममोरवा पहाड़ी ममोरवा, नचाया बदरा लगते असाढ़।

अषाढ़ बन देखी कि जेठ के धुपा से माही तपी के झुलसी गे आंगन मयाई के अब तौ बरसी गे धरती के जीवना धरती के जीवना जुड़ाई बदरा लगत अषाढ़ जुहाई आए बदरा लगत अषाढ़ के झूर झूर खेत झुरान फूल भरिया अपात पात जैसे लागी रही अगिया बगिया म फूलवा बगिया म फूलवा फूलाए बदरा लगत अषाढ़ जुहा।

अब कजरी के गीतन से फूटी रही रागिया, कजरी के गीतन से फूटी रही रागिया, खेतन में हंसी हंसी चली ही धूलिया, पेड़न मझूलना पेड़न मझूलना झूला आए बदरा लगते।

लगतै अषाढ़। अब एक ठे गीत सुन ली सिंगार के बघेली में, कि तोहरे नाम केर साथ जब जुड़ई लागन, तोहरे नाम के

आगन बंदेखी के हम गलियुमा चली तोहका निरखत रही साथे साथे चले काही परिखत रही हम गलियुमा चली तोहका निरखत रही साथे साथे चले काही परिखत रही बिना गोहराइन पीछे हम बिना गोहराइन पीछे हम मुड़ई लागन बनी

लागन, हमरे हृदय कैसन सोहाय लाग है, मीठी बातिन से हमका मोहाय लाग है। हमहु मीठ मिसरियस घुरई लागन, बनी पतंग हम आकाश मा उड़ई लागन। अब तरातियुमा हमका ना नींद लागे, अरे भूखी छाड़ी ठौर टटिया दूरी भागे। रात दिन तोहरे गुण का गुनई लागन, बनी पतंग हम आकाश मा उड़ई लागन। और गीत के अंतिम बन के मीठी लागती है हमका तोहार बतिया, देखा धधकती है दिन भर हमार छतिया, तोहरे

0: Fragen.
1: सुनैया भैया बहनी, अब सज्जनी ये कविता पाठ सुनत रहे, जौने का सुनावत रहे अंजनी कुमार सिंह। और देखी सुनैया भैया बहनी, मनई के जीवन में खेल के बड़ा महात्म है। खेल से मनई के मनोरंजन होते है और एक साथ साथ शरीर के व्यायाम होते है, तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ऐसे मनई का अपने पसंद के कुछ न कुछ खेल खेलत रह जाए। और ये तब खेले के बाद जब मनई टीवी में बैठ के कोनो टीवी के पास कोनो खेल देखा था, या कि मान ली कहो मैदान में नहीं बैठ के खेल देख ही रहा है, तो खेले वाले से जो ज़्यादा उत्सुकता दर्शकन में रहा थी, मतलब इतना ज़्यादा वो माँ खेल में समा जाते कि लगा था कि बस खुदे मैदान में उतर ही, मतलब इतना उत्साह रहा था। और जो वो खेल के दौरान जो बोलत रहा था, कमेंटी करत रहा था कि अभी यह हुई फिर ऐसन बा फिर वैसन बा, उन्होंने एक खेल के उमा है क्षेत्र में अलग योगदान रहा था। सुनिए भैया बहनी, आज आए विश्व खेल पत्रकार दिवस और यह दिवस हर वर्ष 2 जुलाई को मनावा जाता है। यह दिन खेल जगत में काम करे वाले पत्रकारन का उत्कृष्ट कामन के मान्यता दे और उन्हें सम्मानित करे के खातिर समर्पित हवे। सुनिए भैया बहनी, यह दिन के शुरुआत 1924 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS के स्थापना के उपलक्ष्य में भय रही है। खेल पत्रकार खिलाड़ियन और प्रशंसकन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करत है, जो उन खेलन का रोमांच और एथलीटन के प्रेरणादायक कहानियन का दुनिया के समूह लेके आवत है। सुनिए भाई बहनी, एक जो मुख्य उद्देश्य है खेल पत्रकारिता का बढ़ावा दे और खेल पत्रकार का निष्पक्ष और पारदर्शी रिपोर्टिंग के खातिर प्रोत्साहित करब है, जो उन्हें खेल के दिशा कई लोग और ज़्यादा प्रोत्साहित हों और आगे बढ़ें। सुनिए भाई बहनी, खेल पत्रकारिता केवल खेल के कमेंट्री भर न होए, बिलुक हार जीत के पीछे छुपे मानवीय संघर्ष, अनुशासन, समर्पण और प्रेरणा का समाज के समूहें ले आवे के एक ठे सशक्त माध्यम आए। एक खिलाड़ी खेल खेलत है, दर्शक ओकर आनंद लेते, पर वह खेल का अमर बनावे के काम एक खेल पत्रकार के कलम से होत हवे। यहीं से खेल पत्रकारन के योगदान खेल जगत के सफलता और लोकप्रियता के एक ठे महत्वपूर्ण आधार है। एकर मुख्य उद्देश्य खेल का केवल मनोरंजन या प्रतियोगिता तक सीमित न मानी के खेलन का वैश्विक शांति, मित्रता, आपसी सहयोग और सद्भावना और एकजुटता के माध्यम बनाओ है। सुनिए भैया बहनी, एक साथ है जो यह खेल है या मनोरंजन प्रतियोगिता जैसन के बतौबे भन इतने बस न हुए, एक ही खातिर जब मैं नहीं कहूँ एक देश से दूसरे देश खेले जाते हैं तो आपस की जो संस्कृति है, सभ्यता है, रीति रिवाज है, ओह के आदान प्रदान कहूँ न कहूँ होते है। और खेल पत्रकार खिलाड़ी इनके संघर्ष, उनके जीवन, उपलब्धि और खेल के सामाजिक प्रभाव का आम लोगों तक पहुँचावे के काम करते हैं। आज के समय में ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेलन जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय आयोजन के जानकारी करोड़े लोगों तक पहुँचावे माँ खेल पत्रकारन के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्हें के सम्मानित करे के खातिर या जो उन्हें खेल दिवस है या मनावा जाता है। खेल एक साथ है साथ

सटीक और जिम्मेदार खेल प्रतिकार का प्रोत्साहित करें। खेल प्रतिकारण के अधिकारण सुरक्षा और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाऊ है। और जैसा आज के समय में देखिए डिजिटल युग चल रहा है और हम पंचे कहाँ ठे बैठ के खेल के आनंद ले सके थे, खेल कम्युनिटी के आनंद ले सके थे। तो देखिए बताया ना कि यह एक आपसी सहयोग और सद्भावना एकजुटता का माध्यम लोगन के बीच का जोड़ा है, माध्यम बनाव है और लोगन के प्रति खेल में रुचि बाढ़ है, जागरूकता बाढ़ है, तभी जब ई खेल पत्रकारन के माध्यम से यह सब संभव हो पावत है। और ऐसे में नहीं खेल कूद खेले, खेल के आनंद ले, खेल देखे और साथे बैठ के खेलन के मनोरंजन लेते।

सुनैया भैया बहनी अबे सब जने ये पर्यावरण गीत सुनत रहें जोने का गावत रहें शशि कुमार पांडे। और देखिए अब हो गई चले के बेरा ता देई विदा। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनिन का पूजा बहनी के राम राम, जय जवान जय किसान।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोधकी।
1: अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 16th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए 3 दिन के भारत के दौरे पर हैं। वर्तमान में लगातार अनिश्चित और बदलते वैश्विक माहौल में आप दोनों देशों के बीच के आपसी रिश्ते को कितना अहम मानते हैं?
2: पिछले 2-3 साल से जो विश्व देख रहा है कि विश्व में जो भी सामरिक समीकरण थे वो बदल रहे हैं, दो देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, और इस सब बैकग्राउंड में भारत और जापान के जो संबंध हैं वो बहुत स्थिर हैं, बहुत स्टेबल हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, और एक बहुत ही सशक्त नींव के ऊपर ये रिश्ते खड़े हुए हैं। जो जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची जी भारत में हैं और ये 16वीं भारत जापान की एनुअल समिट है, जो ये दिखाती है, ये बतलाती है कि 2001 से समझ लीजिए या उससे पहले भी आज तक जापान में भी प्रधानमंत्री बदले हैं। ये शायद हमारे प्रधानमंत्री के 4th या 5th जापानी प्रधानमंत्री से बातचीत है, भारत में भी प्रधानमंत्री बदले, पर भारत और जापान की जो सोच है, जो मित्रता है, वो प्रगाढ़ है और उसकी नींव बहुत मजबूत है और इस रीजन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का और विश्व में शांति और सद्भावना का एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र बिंदु है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची की मौजूदगी में कई MOUs पर हस्ताक्षर हुए। आपके हिसाब से भारत और जापान दोनों के नजरिए से सबसे अहम समझौते कौन से हैं?
2: जिस कगार पर इस समय विश्व खड़ा हुआ है और जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी और उसके जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हो या इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, वो आगे चलने में बहुत ही अहम मुद्दे भारत और जापान के सामने रहेंगे
1: जी।
2: तो जो 3 MOUs तो बहुत कई साइन हुए हैं और उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बहुत अहम है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम मुद्दे के रूप में उभर के सामने आया है और हर देश उससे जूझने का प्रयत्न कर रहा है, एनर्जी रेजिलियंस, ये जो पिछले साल देखा और जो फरवरी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई और उससे पूरे एशिया पर बहुत प्रभाव पड़ा, और उसमें भी भारत और जापान आगे मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करेंगे।
1: आज की जो ये जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं और एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझी प्राथमिकता है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: अम्बेसडर तायल, जैसा भी आप बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी इस समिट का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर पीस बनकर उभरा है, तो और भारत और जापान ने आज AI की फील्ड में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत और जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज AI और एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
2: देखिए, अगर आप पीछे देखें तो जापान ने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा योगदान किया है, चाहे वो हम मेट्रो देखें
1: जी,
2: सुजुकी कार इन्वेस्टमेंट देखें, पूरा जो बॉम्बे अहमदाबाद ट्रेन बन रही है वो देखें, पर अब जो नया भारत बन रहा है और विश्व में जिस तरह से प्रगति हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत ऊपर आ रहा है और जो देश टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे वो विश्व में आगे बढ़ेंगे। यहाँ भारत और जापान में कॉम्प्लीमेंटेरिटीज है। जापान प्रिसीजन इक्विपमेंट में, हार्डवेयर में दुनिया में बहुत आगे, और भारत सॉफ्टवेयर में, टैलेंट में, स्किल्स में बहुत आगे है। और भारत और जापान की ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी साझेदारी होगी।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जापान और इंडिया की एक साझी प्राथमिकता है। इसी तरह नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की दिशा में कोशिश करने की बात कही थी। आप दोनों प्रधानमंत्रियों के इन बयानों को कैसे देखते हैं?
2: इस समय जो विश्व में स्थिति है, कोविड से जो शुरू हुआ और उसके बाद युद्ध रशिया यूक्रेन का, उसके बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे विश्व की खासतौर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है। और एक आवश्यक है कि कोई भी देश जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक की बात करते हैं, सी लाइंस की बात करते हैं, उस पर कोई देश उसमें खलल न डाले, ये बहुत ही आवश्यक है। और हर देश का आर्थिक प्रगति इस प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर है। पर जो 28 फरवरी के बाद युद्ध हुआ पश्चिम एशिया में और अमेरिका और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद की गई, पूरा वहां से जो तेल का निर्यात था उस पे आंच आई, इस सब के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि हर देश
1: जी
2: एक मूल्य को समझे, एक वैल्यू को, कि फ्री और ओपन सी लाइंस, कि कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी मतभेद हो, पर विश्व में जो व्यापार है, जो शिप्स का आना जाना है, वो जहां से भी जाते हैं उन पर कोई भी देश खलल न डाले। मैं समझता हूं कि भारत और जापान और सभी देश जो हम एशिया के हैं और विश्व के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का। और इसमें भारत और जापान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि दोनों देश गल्फ कंट्रीज से काफी तेल भी आयात करते हैं, गैस भी आयात करते हैं, और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और जापान के लिए है।
1: इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला सवाल करूं, आइए पहले सुनते हैं कि आज की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में जापान की प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, चलिए उसको सुनते हैं।
4: You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. The big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean.
1: भारत और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक जॉइंट रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके जरिए उनका मकसद सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल्स सहित कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करना है। ये देखते हुए कि भारत के पास कई क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा रिजर्व है और जापान के पास मेटलर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्टीज है, क्या आप कहेंगे कि दोनों देशों के लिए जो इकोनॉमिक हमने सिक्योरिटी रोडमैप

0: तैयार किया है, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, खासकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए।
1: जी हाँ बिल्कुल, जापान का ये अनुभव रहा है पिछले 7-8 साल में कि कई बार जब उनके चाइना से कुछ मतभेद हुआ तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का निर्यात जापान के लिए रोक दिया। जापान ने पहले ही उसमें प्रयास किया है और ऑस्ट्रेलिया से वो क्रिटिकल मिनरल्स मंगा रहे हैं और मलेशिया में उनको रिफाइन कर रहे हैं। और जिस तरह से दुनिया ने देखा पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कि एक ही देश चाइना का बहुत ही डोमिनेंस है, बहुत मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पर भी, मैग्नेट्स वगैरह पर, उस लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में और भारत जापान मिलकर काम करें। और इस तरह क्रिटिकल मिनरल्स भारत में हैं बहुत, पर उनको रिफाइन करना ये एक मेटलर्जी का विषय है और उसमें जापान को एक्सपर्टीज है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुख्य समझौता भारत और जापान के बीच में, दोनों प्रधानमंत्री के बीच में हुआ है। और कैसे दुनिया में जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की हो, फार्मास्यूटिकल्स की हो, उनको ऐसे बढ़ाया जाए कि किसी एक देश का उस पर बहुत अधिक मोनोपोली ना रहे, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय दोनों प्रधानमंत्रियों ने आज लिया।
0: अम्बेसडर तायल, जैसे भी आप कह रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो
1: जिस तरह भी, चाहे वो तेल हो और लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, उसको किस तरह एक उनका स्टॉक किया जाए, उनको किस तरह, जिससे कि अगर कोई सप्लाई चेन में कहीं कोई डिसरप्शन हो तो एकदम उसका प्रभाव खरीदारों पर ना पड़े, और लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस
0: जी,
1: इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों देशों ने साथ काम करने के लिए अच्छे निर्णय आज लिए हैं।
0: जी, जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। आज की जो दोनों मुलाकात हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद जापान द्वारा भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लेज ली गई। इसके साथ ही दोनों ने अगले एक दशक में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट और भारत में काम करने वाली जापानीज कंपनीज की संख्या को दुगना करने का एक टारगेट रखा है। ये देखते हुए कि भारत और जापान एशिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो लक्ष्य सेट किया गया है, इससे न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा होगा?
1: जी, बहुत फायदा होगा। ये पिछले वर्ष एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट साइन हुआ था भारत और जापान का, जब हमारे प्रधानमंत्री 15वीं समिट के लिए जापान गए थे, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 10 ट्रिलियन येन जापान भारत में निवेश करेगा अगले 10 वर्षों में। और आज करीब 120 MOU साइन हुए हैं, जिसमें उनका अगर पूरी उसका देखा जाए तो शायद $12 बिलियन के करीब वो निवेश जापानीज कंपनियां भारत में करेंगी। एक जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम मीटिंग भी है जिसमें 150 जापानीज कंपनी आके यहाँ पर उसमें भागीदारी करेंगी। तो जिस तरह भारत और जापान को एशिया में आर्थिक प्रगति का एंजिन होना चाहिए
0: जी,
1: एक स्रोत होना चाहिए, और अगर बड़ी इकोनॉमी जापान, इंडो पैसिफिक में चाइना के बाद जापान आता है, फिर भारत है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे और दोनों की आर्थिक प्रगति होगी तो पूरे रीजन में, क्योंकि देखिए निर्यात आयात, आजकल कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था केवल अकेले काम नहीं करती
0: है, बिल्कुल,
1: वो सब देशों से, कहीं से आयात होता है, कहीं से निर्यात होता है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमीज का। और उसमें भारत और जापान की आर्थिक प्रगति अगर तेजी से होगी तो पूरे रीजन को उससे बहुत आर्थिक लाभ होगा।
0: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही है अनुभा रोहतगी।
3: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

की शुरुआत में सुनिए विधाता फिल्म का गीत। इसे गाया है सुरेश वाडकर और अनवर ने। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

महेंद्र कपूर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एस एच बिहारी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत उमंग फिल्म से।

ये गीत आप सुन रहे हैं जानी दुश्मन फिल्म से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों ने इस गीत को गाया है। वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है छोटे से अंतराल का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
5: भारत जापान संबंध

0: वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे

0: 18 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री

0: بالتل سے ہوتے ہوئے بابا برفانی کی گفا کا رخ کریں گے۔ ننمن اور بالتل کیمپ پہنچتے ہی پرشاسن نے یاتریوں کا گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا۔ یاترا کے مدنظر دونوں راستوں پر سرکشا کے کڑے بندوبست کیے گئے ہیں۔ دونوں راستوں پر پولیس، اردھ سینک بلوں اور آرمی جوانوں کی بڑی سنکھیا میں تعیناتی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چکتسا سویدھائیں، موسم کی جانکاری کے لیے پرنالی، اہم جگہوں پر کوئک ریسپانس ٹیمیں، بڑے پیمانے پہ سی سی ٹی وی نگرانی اور آر ایف آئی ڈی آدھارت پرنالی بھی لگائی گئی ہے۔ آکاشوانی سماچار کے لیے سری نگر سے میں اشفاق شاہ۔
1: اروناچل پردیش کے مکھیہ منتری پیما کھانڈو نے کہا ہے کہ راجیہ میں باڑھ پربھاوت کھیتروں کا زمینی آکلن جاری ہے اور اس کے پورا ہونے پر کیندر سرکار کو ایک وستر رپورٹ سونپی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ راجیہ آپدا موچن بل ایس ڈی آر ایف اور راشٹریہ آپدا موچن بل این ڈی آر ایف کے ماندنڈوں کے انوسار راحت سہایتا پردان کی جائے گی۔ موسم وبھاگ نے پشچمی اور مدھیہ بھارت کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے لیے موسلادھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी
4: एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound.

0: माने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज, मसनी जहानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
0: जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ्फुज इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ्फुज को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और ताउन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाईची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज, अदविया और मौसमी जहानत के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हमनसब सनाई तकाईची के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमी के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज और इक्तिसादी तहफ्फुज समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामी जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीकेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अखदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हमनसब सनाई तकाईची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतहाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत

जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उंसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शिपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए रणा गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं, जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निपटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सार्फिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैन अलावामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दोचार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अलावामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैन अलावामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला, आवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनू जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है, बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहले जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाकई नुनवान और जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया।

0: Dinledim. Genul che ha trinivasi a jana subaranana hoşi yamanlar ciyatrin kapella kafila sakıt sikördü ki bir acdi beher vadi pahunç gaya. Ye kafila 4822 yatrin per muştamil hai. İnme 2510 yatrin pehengam jabki 2312 yatrin baltal ke raste kal subah pavitr gufa ki taraf ravana honge. Base camp pahunçte hi intizamiya ke afsaran aur maqami logon ne yatriyon ka valihana istiqbal kiya. Yatra ke aise inqaad ke liye dono raston par security کے معقول انتظامات کیے گئے ہیں یاترا کے پورے راستے پر پولیس نیم فوجی دستوں اور فوج کے اضافی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ طبی خدمات کی فراہمی موسمی حالات کی نگرانی کی سہولیات کے علاوہ حساس مقامات پر کوئک ریسپانس ٹیمز کو بھی مامور کیا گیا ہے علاوہ ازیں یاترا کے روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے اور یاتریوں نیز گاڑیوں کے لیے آر ایف آئی ڈی ٹریکنگ نظام بھی نصب کیا گیا ہے اردو خبروں کے لیے سری نگر سے میں اشفاق شاہ
1: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली गुजरात के मजीद इलाकों उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों हरियाणा पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके गुजरात हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड पश्चिम महाराष्ट्र पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। आईएमडी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के निचली इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कब आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मैट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में है। पहचान फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार शंकर जयकिशन।

सुहाना सफर। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं बरसात की रात फिल्म का गीत। मन्ना डे, आशा भोसले, बतेश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ें। साहिर ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं रोशन।

बरसात की रात फिल्म की इस कव्वाली के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। कार्यक्रम में पहला फरमाइशी गीत जिस फिल्म के लिए है, उस फिल्म का नाम है नौकर। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। मजरूह ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश की है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर। अगली फरमाइश पटेल नगर मलोट पंजाब से है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया।

या और बेबी आरजू जाजुरिया ने इस गीत की फरमाइश की है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से फरमाइश करते हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।

मयंक रेडियो श्रोता संघ नवाबगढ़ कटई से फरमाइश की है। नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामनी वर्मा ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य।

रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। अगली फरमाइश है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान की। आप सभी ने फरमाइश की है कामचोर फिल्म के गीत की। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। इंदिवर ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश कार्यक्रम। अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, घंटाघर चौक खंडवा से फरमाइश की है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया ने। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं धर्मवीर फिल्म का गीत, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और मुकेश ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आपकी कसम, इस फिल्म के गीत के लिए फरमाइश की है योगेश कुमार चौरसिया, श्रीमती संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया और कान्हा चौरसिया ने गोटे गांव से। अगली फरमाइश है बरेली कैंट रेलवे के चनहेटी बरेली से दिनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान की। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने फरमाइश की है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

कार्यक्रम का आखिरी गीत तेरी मेहरबानियां फिल्म से, शब्बीर कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रोबिन।

अब आज का आपके फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: एक और जो नजर आना है वो मुझे लगता है कि एक सही में एक बहुत अच्छा वॉर देखने को मिलेगा.
1: सो बैटल विद इन द वॉर टू लुक अहेड टू नाउ राजा. We've seen with England the way they are functioning like a well-oiled machine. Charlie Dean was captaining in the games in between when Sevab Brunt was injured. Every individual knows their roles and is performing that to the best of their abilities.
2: I think that's the hallmark of a good team, Megha. And any team that plays as well as England has done should fancy itself. Even though the skipper looked a little disappointed that she was not able to get a first goal, I think England got the batting to win this game, to put pressure on South Africa. And everything that is past, we've been talking about a couple of games that South Africa won in the last two World Cups, both in the 20-over format and the 50-over format against England. I don't think that's going to count for much. What you do today is what is going to matter a lot, and I think England has got the well-balanced team. If you talk about South Africa, you're talking primarily about their pace bowling, not so much about their batting, not so much about their spin bowling. England seems the well-rounded side. I think England will have the edge in this game.
3: क्योंकि होम कंडीशन और घरेलू सपोर्ट भी होगा इंग्लैंड के पक्ष में, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है या उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है इसकी वजह से?
4: अभी तक तो जैसा देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट में उनको सपोर्ट ही मिल रहा है एंड दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द कंडीशंस एंड जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से हमें कब हमें गियर सेकेंड गियर लगाना कैसे कब डिफेंसिव होना है. तो आई थिंक दे आर गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम द क्राउड एज वेल एंड एज वेल एज दे आर वेल अवेयर ऑफ About the conditions.
1: जीशान खास करके टॉप ऑर्डर ने काफी अतिशी बल्लेबाजी की है. अब तक टॉप थ्री का जो स्कोरिंग रेट रहा है 8.8 का अभी तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक.
0: हाँ बिल्कुल, देखिए उनके पास में जो जो उनके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो हॉज का जो रहा है परफॉर्मेंस, वो उन्होंने सेंचुरी भी की है इस वर्ल्ड कप के सीरीज में, तो एक वो ज़रूर से नज़र आना होएगा कि शुरू के 6 ओवर में क्या करती हैं. बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही है मुझे कि पीछे की बातों को नहीं कोई भी सोचता है. जब आज का मैच होता है तो आज के मैच को देखते हैं, और फिर ये भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूर है कि अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको फ़ायदा होता है. उनके पास ज़रूर से वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है. मॉरल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खासकर जो वुमेंस क्रिकेट के टीम होती है उसको एक बहुत ज़रूरत होती है मॉरल सपोर्ट की. वो है उनको इंग्लैंड के साथ में, थोड़ा एज है वहाँ पे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में होना है, बैटिंग करनी है उन्हें. शुरू के 6 ओवर के जो मैचेस होंगे उस 6 ओवर के मैचेस में उनको ज़रूर से ये समझना होगा कि कैसे उनके पेस बॉलर्स को उनको फेस करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू का 6 ओवर. अगर वो शुरू के 6 ओवर में विकेट कम गिरे और एक 40-45 के आसपास वो स्कोर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक मैच आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए फायदेमंद होगा.
3: और अजय, बैटिंग ही तो रही है इंग्लैंड की जिसकी वजह से ये टीम अपने ग्रुप के पांचों मैच जीतने में सफल रही है. दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मिला जुला प्रदर्शन रहा है, किसी खिलाड़ी ने बढ़िया किया, किसी और मैच में किसी और खिलाड़ी ने बढ़िया किया, तो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के अलावा उन्होंने भी जीते. मनोवैज्ञानिक रूप से इस मुकाबले में कौन सी टीम बेहतर स्थिति में होगी?
2: इंग्लैंड होगी, क्योंकि ओवरऑल कमांडिंग परफॉर्मेंसेज इंग्लैंड के ज्यादा बेहतर हैं. अगर आप पिछले मैच को देखें जो बांग्लादेश के साथ था साउथ अफ्रीका का, दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब नहीं लग रहा था कि आसानी से जीत लेंगे, लड़खड़ा गई थी टीम, और वहाँ से उठ के आना जीतना अच्छी बात है. बट आई थिंक इंग्लैंड के पास है जो वॉट एवर एज दैट वी आर लुकिंग फॉर इज विद इंग्लैंड, और खास करके क्योंकि इस पिच पे आज मैच हो चुका है ऑलरेडी, और जब आप और क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड के फिरकी गेंदबाज विल कम इन टू प्ले एंड साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली गिवन देम दैट चांस. अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए हर चीज सही बैठ रहा है और आज वो मैच इंग्लैंड के पक्ष में जा सकता है.
1: One of the players contributing to that edge is Danny Wyatt-Hodge, and we've seen in her case took a paternity break, and in fact didn't play a whole lot of games in the build-up. The games that she played, she struggled, but brought her A game to the World Cup.
4: Yeah, I mean, she's a very good batter, and she.

0: give a very good start to the team, and she has given, she's proven this tournament as well. But if you see that there are other batters also, because she knows that we have deep batting lineup, so that is the reason she is able to give those starts to the team. And if you lay a good foundation, definitely, I mean, they can find a very good score in this match.
1: जिशान, इतिहास का किसी मैच में कितना बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, 2023 के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, उसमें भी साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही थी, तो वो क्या साइकोलॉजिकल एज होगा उनके पास इस मैच में, इंग्लैंड की टीम प्रेशर में होगी?
2: जरूर, थोड़ा कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि हम 2020 और 50 दोनों में साउथ अफ्रीका से अगर हारे हुए हैं तो जरूर थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन देखिए, आजकल जो क्रिकेट जो हो गया, इतना प्रोफेशनल हो गया है और इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं जो भी क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो खासकर होते हैं, उनको वो पीछे की सारी चीजें जो है ना, वो सब चीजें खत्म कर दी जाती हैं. आजकल जो जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वो सपोर्ट स्टाफ इस तरह से उनको तैयार करता है ग्राउंड में जाने के पहले कि उनको वो पुरानी सारी चीजें, वो अपनी फैमिली और वो सारी चीजों को भूल करके ग्राउंड के अंदर में जाते हैं. तो वो जो मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि वो एक प्रेशर थोड़ा सा होता है. लेकिन मुझे खासकर अभी जो इनके परफॉर्मेंस मैं देखता चला आ रहा हूँ इंग्लैंड की टीम का, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो पुरानी जो बातें हैं वो चीज़ें कहीं थोड़ी होंगी 1-2%, लेकिन उन चीज़ों का कोई असर यहाँ नहीं होएगा. और इंग्लैंड नो डाउट, मुझे जहाँ तक यकीन है कि इंग्लैंड एक अच्छा परफॉर्मेंस आज करेगा. लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी प्रेडिक्शन पहले से कर देना इस मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर सकता कभी भी. हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कह ये समझता हूँ कि भाई लास्ट ओवर तक मैच होते हैं T20 के, और आखिरी वक्त में आखिरी बॉल पे भी कुछ डिसीजन बदल जाते हैं. जहाँ तक इस मैच की बात है, साउथ अफ्रीका और उनकी बात अगर आपस में करें आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ऑब्वियस है कि इंग्लैंड के सपोर्ट में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. ग्राउंड उनका है, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो उनके हैं, उनकी फैमिली के लोग होंगे आसपास में, उनके फ्रेंड्स होंगे सारे, तो वो जो एक सपोर्ट होता है बहुत बड़ा सपोर्ट है. तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड और परफॉर्मेंस भी जो उनका है, वो परफॉर्मेंस ये शो कर रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो है आज के दिन में बेहतर नज़र आ रही है बनिस्बत के साउथ अफ्रीका के. लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट आखिरी बॉल तक, और वो भी T20 है तो वो आखिरी बॉल तक होता है. तो हमें वो इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन बेहतर तरीके से इस मैच को लेकर के जाता है.
3: और श्रोता किस टीम के समर्थन में है ये हम जानने की कोशिश करते हैं. रिमाइंड यू, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आर नंबर 011-2342-1084 and 85. लेट्स लिसन इन टू द फर्स्ट कॉलर. नमस्कार जी. रवि, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी? जी
4: आज की और डायरेक्टर से मेरा निवेदन ये है कि वो एम्पायर के बारे में भी बताया करके कौन कौन से एम्पायर है.
3: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए और आपकी टिप्पणी के लिए. वेल लिसनर, देयर सर्टेनली नॉट प्लेइंग इट सेफ, नॉट प्लेइंग इट विद अ स्ट्रेट बैट. इज एम्फेटिकली डिक्लेयर्ड दैट साउथ अफ्रीका विल विन इट कर्टसी आया बोंगा खाका. एंड वेल साउथ अफ्रीका डू हैव अ ग्रेट बोलिंग अटैक, पर्टिकुलरली द पेस अटैक. 25 विकेट्स दैट द पेसर्स हैव पिक्ड अप इज द हाईएस्ट थस फार इन द टूर्नामेंट राजा.
1: But we have to look at the teams that they played. I think apart from India, the kind of competition that they would have gotten, picking up wickets against Bangladesh, I'm not watering down their efforts, but all that doesn't matter because you're up against a superior team, you're up against the home team now. Whatever you've done in the past has brought you here, but you've got to perform at your best now. And that can happen only when they bowl on the spot today and keep the English batters quiet, earn some wickets early on with the new ball, and that is when all the effort that they've put in so far in the tournament will bear fruit. They'll have to play a very good cricket

0: हैव टू बीट इंग्लैंड।
1: और मेघा हमारे एक श्रोता ने कहा कि कमेंटेटर जो है वो अंपायरों के नाम बताएं कि आज के मैच में कौन कौन से अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं, तो आप बता दें।
2: जी बिल्कुल, एलोइस शेरिडन, जैकलीन विलियम्स हैं दो अंपायर, और टीवी अंपायर हैं क्लेयर पोलोसैक, और रिजर्व अंपायर हैं कैंडेस या बोडे।
1: और अब सवाल ख्याति से कि दोनों टीमों की कप्तानों पर अगर नजर डालते हैं तो इंग्लैंड की कप्तान नैट सिंगर ब्रेंट फिट होने के बाद इस मैच में वापसी कर रही हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फॉर्ट फॉर्म के लिए संघर्ष कर रही हैं पूरे टूर्नामेंट में, और सेमीफाइनल जैसा अहम मुकाबला है। दोनों की कैप्टेंसी के साथ साथ बल्ले की कितनी बड़ी भूमिका इस सेमीफाइनल मैच में रहने वाली है?
3: देखिए अगर आप इनका पुराना अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इन दोनों का मिडिल नेम जो है वो कंसिस्टेंट है, तो आई थिंक इस तरीके से अगर आप इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे बहुत अहम माना जाएगा, एंड जिनका मिडिल नेम ही कंसिस्टेंसी है तो आई एम श्योर दैट दे विल प्रूव देयर बैटल एंड मेटल। एंड डेफिनेटली वुल्फॉर्ट का एज आई सेड अर्लियर आल्सो उसका भी हर बेस्ट इज येट टू कम, एंड आई थिंक इट्स अ बिग गेम फॉर देयर टीम, डेफिनेटली शी विल शो अ गुड गेम टुडे।
1: और हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं हमारे श्रोता, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी स्वागत है आपका।
4: नमस्कार सर,
1: नाम बताइए अपना।
4: सर मैं विश्वप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला राजौरी से।
1: जी अपना सवाल और जो भी टिप्पणी आपकी वो कृपया बताएं।
4: सर मेरा प्रश्न ये है कि आज जो सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड का, मैं चाहता हूँ कि आज दक्षिण अफ्रीका जीते क्योंकि इनका लक हमेशा इनके खिलाफ जाता है, आज इनको ईश्वर जिताए। और मेरा ये प्रश्न है आपको कि आज क्या दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव है क्या?
1: जी प्लेइंग 11 की बात करें तो बदलाव तो है कुछ दोनों ही टीमों में, और हम आपको बताते हैं कि क्या बदलाव है। मेघा बताएं कृपया।
2: बिकॉज द कैप्टन कम्स बैक, नैट सिल्वर ब्रंट कम्स बैक फॉर इंग्लैंड, सो सोफिया डंकले हैज हैड टू मेक वे फॉर हर, सो दैट्स द चेंज इन द इंग्लैंड playing 11, and Sophia Dunkley had been featuring in the games where we didn't see skipper Nat Silverbrunt around. And talking about South Africa, they have gone for one change as well, and Sunil Loos is come in for Dane Van Niekerk.
1: जी और राजा अगर इस मैच की हम बात करें फिर से एक बार फिर, तो इंग्लैंड के अभी तक के अभियान में जो है वो कंसिस्टेंसी लगातार दिखी है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीता, भारत के खिलाफ भी कांटे का उनका मुकाबला रहा, तो आज के मैच में आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है?
0: ये दो मैचेस उनको तैयार भी किए होंगे, एक टफ मैच जो सेमीफाइनल होता है उसके लिए शायद इंडिया का मैच या बांग्लादेश का मैच उनको तैयारी में मदद की होगी, लेकिन उसमें से कितना सीख लिए हैं और फिर आज उसमें सुधार कितना ला सकते हैं अपने गेम में, खास करके उनके बल्लेबाजी में। दे हैव टेकन अ चांस पहले गेंदबाजी करके, उन्हें लगता है कि इंग्लैंड को अगर कम स्कोर में रोक लें तो उनके बल्लेबाज मैच जिता सकते हैं। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं फिर यू कम अंडर प्रेशर टू विन द मैच टू डिफेंड द स्कोर, तो उनके जो बल्लेबाज है वो मैच जिताना चाहिए उनको। क्या वो आज हो सकता है ये देखने वाली बात है। इंग्लैंड के पास सारे वो पत्ते हैं, दे हैव गॉट इनफ एंड मोर ट्रम्प कार्ड विद देम, लेकिन साउथ अफ्रीका को चाहिए कि अपने बल्लेबाज आज कुछ करिश्मा कर दिखाएं।
2: And Kathy, talking about South Africa's bowling, we talked about the 25 wickets that the Pacers have taken, including Shabnam Ismail, who reversed her retirement to come back and play in the T20 World Cup. She's an experienced campaigner. How would you assess her comeback thus far?
3: So definitely, I mean, it's a very good decision, I would say, because their team is at their best at the moment, and there are chances they can lift the trophy as well. And because if you have seen their past performances, they have done really well, and it's a good decision because now the team looks very balanced and packed, and the three bowlers like Ismail Khan and the other as well, they're doing really well, and it's a very good balanced pacing attack. And I'm sure that she will definitely put an effort to lift this trophy for her team.
1: आज जिशान फिर से जो है बल्लेबाजी करने का मौका पहले इंग्लैंड की टीम को मिला है। टॉप ऑर्डर उनका बहुत कमाल का प्रदर्शन कर रहा है, और एक तरह से माना जा रहा है कि इंग्लैंड के टॉप थ्री बल्लेबाज और उधर साउथ अफ्रीका की जो फास्ट गेंदबाजी है उनके बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। ऐसे में इंग्लैंड क्या स्कोर करे कि थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में पाए?
5: मैंने पहले

0: इस बात को कि जो आज है वो बेसिकली एक तरह से एक वॉर है जो बेसबॉल उनके हैं साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम के और जो इंग्लैंड टीम के जो बैटर्स हैं उनके बीच में एक वॉर है। मैं ये फिर से ये कहता हूँ कि शुरू का 6 ओवर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है T20 के मैचेस के लिए, दोनों के लिए, एक पेस बॉलर्स के लिए जो दूसरी टीम के हैं और जो बैटिंग जो करने आएंगे उनके लिए। तो ये खासकर बहुत ज़रूरी है कि जो खासकर वो जो उनके बैटर हैं उनके बारे में ये ज़रूर है कि उन्होंने 100 भी किया था लास्ट किसी मैच में हॉज ने, तो हॉज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो एक लम्बा अगर वो खेलने की कोशिश करें, लाइक अगर वो ये सोच के चलें कि हम शुरू के 6 ओवर में 50-60 बना दें और आउट हो जाएं, फिर वो प्रॉब्लम होएगी, इंग्लैंड टीम को बनना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये होएगा मेरे ख्याल से, ये स्ट्रैटेजी उनकी जो भी सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने बनाया होगा कि शुरू के 6 ओवर में जो इनके पेस बॉलर्स हैं उसको कैसे फेस करना है, कम विकेट गिराना है, आप आगे लेकर टीम के चलेंगे। अगर ऐसा करने में वो सक्सेस होते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा लंबा स्कोर इंग्लैंड खड़ा करेंगे पेस बॉलर्स के अगेंस्ट में, और बाद में टीम जो इंग्लैंड टीम के पास में स्पिनर्स हैं कुछ, मैंने देखा है कि काफ़ी विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने और इंग्लैंड को जिताने में उनकी बहुत मदद रही है। तो मेरे ख्याल से ये शुरू का जो 6 ओवर का मैच है इंग्लैंड के लिए खासकर और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए खासकर ये डिसाइड करेगा। फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी बैटिंग करने आता है या जो बॉलिंग करता है दोनों के लिए, कि वो कैसे कम से कम स्कोर में भी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालने की कोशिश करते हैं। जो इसमें कामयाब होंगे वो ऊपर की तरफ ज़रूर से आगे की तरफ वो टीम जो है बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये सोच करके आई होगी कि हमें शुरू के 6 ओवर में अगर 40-45 भी रन बनते हैं तो वो उतना बनाएं, विकेट ना गिरने दें, सो डेट के बाद के जो ओवर्स होंगे उसमें जब बॉलर को दूसरे नए आएंगे उनकी तरफ से बॉल डालने के लिए तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर आगे हिट करके और 150-60 के आसपास स्कोर अगर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे टारगेट होएगा तो वो बेहतर होगा इंग्लैंड के लिए। मुझे यकीन है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप मैं देख रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस जो थ्रू आउट जो सीरीज में देखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये ज़रूर है क्रिकेट है, आपको थोड़ी सेंसेबल बैटिंग करनी पड़ेगी आज के दिन में, इसलिए कि ये बड़ा मैच है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में अगर आप थोड़े से भी लैक किया, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर अपने आप को लेकर के आएंगे तो भी मुश्किल होएगी। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी बना के आएंगे और ज़रूर से एक ऐसा स्कोर खड़ा करेंगे जो अफ्रीका के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होएगी।
1: और राजा फील्डिंग की आज कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है, साउथ अफ्रीका का जो स्टैंडर्ड होता है फील्डिंग में वो इस पूरे वर्ल्ड कप में दिखा नहीं है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका होगी आज?
2: बहुत बड़ी होगी। कोई भी मैच में, क्रिकेट का कोई भी मैच, वनडे का मैच हो या ICC वीमेंस वर्ल्ड कप हो T20 का, फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद भारत की टीम को बहुत बुरी तरीके से पता चला होगा इस टूर्नामेंट में कि देयर फील्डिंग वॉज नॉट अप टू स्क्रैच, और क्योंकि साउथ अफ्रीका कैन सेव एटलीस्ट 10 or 15 रन्स, दैट बी अ गुड एडवांटेज फॉर देम। काफ़ी फिट टीम है एंड आई थिंक इट गोइंग टू हेल्प देम, लेकिन मैच तो इंग्लैंड के ओर जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, पहले 6 ओवर में पता चल जाएगा, बट आई थिंक इंग्लैंड इज विल हैज द कैन कॉल द शॉट्स इन दिस गेम।
3: Albeit subtly, we've had predictions from our experts, but thanks a lot for your analysis as well. Thank you, Dharmendra. So, it is going to be England's formidable top order that will be up against the pace attack that has picked up 25 wickets for South Africa. A battle really to watch out for in this first innings as we wrap up our show here at First Ball 20 with the two England openers, Danny Wyatt-Hodge and Amy Jones, heading to the centre.
4: First Ball 20.

मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का T20 महिला विश्व कप का सेमीफाइनल नंबर 2 यानी दूसरा सेमीफाइनल आमने सामने होने वाली टीमें

0: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका और मेजबान है इंग्लैंड और वेल्स में इस बार के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसा आप प्रोग्राम में भी सुन रहे थे इस हमारे विवरण से पहले कि पलड़ा इंग्लैंड का भारी नजर आ रहा है कागज पर, लेकिन देखना यह होगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका, जो कि पिछले लगातार 2-3 वर्षों से आईसीसी टूर्नामेंट्स के महिला वर्ग में फाइनल में पहुंचते रहे हैं, यह अलग बात है कि खिताब उनसे छिटक गया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी काबिलियत पर किसी तरीके का शक किसी को नहीं है। और टॉस जीता गया था दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। दोनों टीमों में एक एक परिवर्तन है, एक फोर्स्ड चेंज है, एक टैक्टिकल चेंज है। टैक्टिकल चेंज माना गया आज साउथ अफ्रीका की टीम में। कप्तान लॉरा वॉलवर्ट का कहना था कि सुनील लूस को उन्होंने शामिल किया है डेन वॉलकर की जगह, और इंग्लैंड की टीम में सोफिया डंकले की जगह नैट सिवर ब्रंट का आगमन हुआ है, जो 3 मैचेस नहीं खेल पाई थी काफ इंजरी की वजह से, लेकिन आज के मैच में न केवल वो टीम का नेतृत्व कर रही हैं बल्कि एक बहुत बड़े अहम मुकाबले से पहले उनका फिट होना इंग्लैंड के लिए प्लस पॉइंट समझा जा रहा है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ शिवेंद्र चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं अंग्रेजी में कमेंट्री के लिए मेरे साथ ही दर्पण टिकिया। दर्पण नमस्कार, स्वागत आपका।
1: Thank you so much, Shivendra. We are all set for the action to begin at the Oval. It is England versus South Africa. Of course, we are joined by Sunil Dhige, our scorer, who will be keeping us updated so that we can bring you the score as and when it gets updated. And of course, we have Jatin Sood with us, who will be bringing some intriguing stats around the game. England versus South Africa, the winner plays in the grand finale of ICC Women's T20 World Cup 2026. They will face off against Australia. And for both these teams, it has been a story of wait. It has been a story of an elongated wait. Of course, for South Africa, it has been a wait of a lifetime. They have never ever won an ICC trophy in women's cricket. They are gunning for their first ICC trophy in their last 3 tournaments. They have come very, very close to the summit and have stumbled right at the end. 2025 ODI World Cup played in India. They reached the finals and lost it. Before that, the 24 T20 World Cup. They reached the finals and lost it. Before that, the 23 T20 World Cup, which was played in South Africa. They reached the finals and lost it. Here they are, looking to reach their 4th successive ICC.
2: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में

0: दार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless."
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas." Ms. Takaichi said, "Through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action." On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and

0: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए अब हम आपको लिए चलते हैं आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली।
1: और आए द बॉल डजंट इवन कम इन कॉन्टैक्ट विद द बैटर।